0: कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक है सर। सबसे पहले तो चंडीगढ़ आकाशवाणी परिवार को और जो भी श्रोता कार्यक्रम सुन रहे हैं उनको मेरी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।
0: आपको भी आकाशवाणी चंडीगढ़ परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: हाँ तो सर, आज के विषय में तो मैं ये कहूंगा कि गुरु का स्थान जो है वो सर्वोपरि है और गुरु की महत्वता हमारे जीवन में अति बहुत अधिक है। बिना गुरु के जीवन का सफर पूर्ण नहीं है। गुरु हमें ज्ञान ही नहीं बल्कि हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। गुरु हमें सही दिशा दिखाते हैं और गुरु के बिना शिष्य का जीवन अधूरा है। वही हमें जीने की राह दिखाते हैं और हमें रोशनी दिखाते हैं।
0: जी बिल्कुल, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं हमारे गुरु, है ना?
1: जी सर, जी सर।
0: ज्ञान की रोशनी हमें देते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार जिंदगी में ऐसा मोड़ भी आता है जब आपको समझ नहीं आ रहा होता कि अब क्या करें।
1: जी सर।
0: तो उस वक्त आपके गुरु आपको रास्ता दिखाते हैं आगे बढ़ने के लिए।
1: बिल्कुल सही सर।
0: तो इसलिए गुरुओं का सम्मान बहुत जरूरी है, बेहद लाजमी है।
1: बिल्कुल सर।
0: चलिए प्रदीप जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।
0: शुक्रिया आपका फोन करने के लिए।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।

0: हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: हेलो
0: जी, बोलिए, कौन बोल रहे हैं?
1: सर, मैं मोनिका बात कर रही हूँ।
0: जी बोलिए मोनिका जी, कैसी हैं आप, कहाँ से बोल रही हैं?
1: सर मैं बोल रही हूँ।
0: तो आज का जो हमारा विषय है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? हेलो
1: सर, मैं शिमला टीटी से बोल रही हूँ।
0: जी बोलिए बोलिए, शिमला से बोल रही हैं आप मोनिका जी। आज का जो विषय है उसके बारे में क्या विचार हैं आपके, क्या कहना चाहती हैं?
1: सबसे पहले सर आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।
0: जी आपको भी आकाशवाणी चंडीगढ़ परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं,
1: और सुनने वालों को भी मेरी ओर से शुभकामनाएं।
0: जी
1: सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम छोटे होते हैं ना सर, तब हमारा गुरु ही हमारा सब कुछ होता है। हम जैसे हम अपनी माँ की आंच छोड़ के आंचल में पढ़ते हैं। हेलो
0: जी जी बोलिए।
1: जैसे हम के आंचल में पढ़ते हैं तो हमें गुरु ही हमें सिखाता है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा कि सबसे पहले गुरु होते हैं माँ बाप, है ना? तो माँ बाप हमें बोलना चलना फिरना, हमें संस्कार वो सिखाते हैं, और उसके बाद जब हम लोग स्कूल में जाते हैं तो हमारे शिक्षक हमारे गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें शिक्षा के ज्ञान से हमारे अंदर जो है वो रोशनी करते हैं, हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाते हैं।
1: जी सर, कई बार सर हमें गुरु डांट भी देते हैं, कई बार हमें गुस्सा मतलब उस टाइम पे आता है।
0: लेकिन देखिए वो डांटते इसलिए हैं ताकि हम सही रास्ते पे चलें।
1: जी लेकिन उस डांट का मतलब बाद में एहसास होता है जब स्कूल से हम निकलते हैं।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो मुझे कई बार डांट पड़ती थी तो थोड़ा वो दिमाग में आता था, लेकिन आज मैं अपने सारे जितने भी गुरु हैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, क्योंकि कई बार मुझे कई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो मुझे लगता है ऐसा कि आज काश वो मेरे पास होते तो मुझे बता सकते कि इस चीज़ का हल क्या है ना?
1: अपने बारे में अपनी
0: जी
1: सर, आज मतलब मैंने किसी से मतलब थर्ड क्लास से किस सर का नंबर लिया। तो मतलब मैंने आज उनको कॉल कर ली।
0: बहुत अच्छा किया आपने। कल है शिक्षक दिवस, वैसे 5 तारीख को होता है, तो क्योंकि हेलो चंडीगढ़ आज हमारा पढ़ रहा था इस फ्राइडे के दिन, तो हमने सोचा कि इस बार जो है वो हम लोग बात कर लें, अपने श्रोताओं के विचार जान लें। चलिए।

0: दीपिका जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए। हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी, नमस्कार। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब हम लोग कॉल कनेक्ट करते हैं तो कॉल कनेक्ट नहीं होती है, किसी कारणवश श्रोता जो हैं वो दूसरे नंबर पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो हम बार बार आपसे गुजारिश करते हैं कि आपने जो नंबर मिलाया है उसी पर बने रहें, थोड़ा सा सब्र रखें तो हम लोग अच्छी बातचीत जो है वो अपने सुनने वालों को सुनवा पाएंगे। एक बार फिर से नंबर फ्लैश हो रहे हैं, बात करके देखते हैं कौन श्रोता ऑनलाइन है। हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है, नमस्कार।
1: हेलो, नमस्कार सर जी, मैं अरविंद कुमार गांव मोरनी हिल से बोल रहा हूँ सर।
0: जी अरविंद जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया सर, आप सुनाइए सर जी।
0: बहुत बढ़िया। तो आज का जो हमारा विषय है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमें अपने गुरुजनों का, अध्यापकों का और सभी बड़ों का आदर करना चाहिए सर।
0: जी बिल्कुल
1: जी, और क्योंकि गुरु ही हमें सही रास्ते पे डालते हैं और गुरु ही हमें शिक्षा देते हैं। अच्छे आगे सक्सेसफुल होने के लिए गुरु सबसे पहले माता पिता जी होते हैं गुरु, और फिर विद्यालय में एडमिशन लेने के बाद गुरु अध्यापक और गुरुजन हमारे मार्गदर्शन करते हैं सर।
0: बिल्कुल, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए जो मार्ग होता है ना, वो मार्ग दिखाते हैं हमारे गुरु, हमारे शिक्षक। तो अगर हम उस पर चलते रहेंगे, अपने गुरुओं के द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो जिंदगी में सफल ही होंगे हमेशा।
1: सर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं भी 10th क्लास में पढ़ता था, मेरे साथ भी थोड़ा गुरु जी के साथ में थोड़ी मनमुटाव हो गया था, मैं आज भी उसके लिए समय याचना मांगना चाहता हूँ सर।
0: जी बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं शायद वो आपके गुरु जी इस समय कार्यक्रम सुन रहे होंगे, तो उन्होंने जरूर आपकी ये बात सुनी होगी।
1: जी जी,
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा अरविंद जी आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए।
1: धन्यवाद।

0: हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सर नमस्कार। सर जी
0: नमस्कार। जी
1: सर जुलाना जी, हरियाणा से बोल रहा हूँ जी।
0: जी अमित जी, आपकी आवाज थोड़ी खराब हो रही है, आप नेटवर्क एरिया में आ जाइए ना।
1: जी सर अब आ रही है सर।
0: जी बोलिए अमित जी।
1: श्री कृष्ण भगवान जी की जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं सर, आपके परिवार को।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पहले तो स्पीकर बंद कर लीजिए, मेन पे बात कर लीजिए, ठीक है?
1: स्पीकर बंद है सर, बंद है अभी तो सर।
0: जी अभी आपने किया?
1: जी।
0: तो आज का जो विषय है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: सर जी हमारे एक शिक्षक थे जो कि इतने खतरनाक थे सर, जैसे कि नाम लेते हम खूब जाते थे सर, जैसे कि इतना अच्छा पढ़ाते थे और इतना आचरण था उनका बहुत बढ़िया सर।
0: तो खतरनाक ना हुए ना वो, अच्छे हुए है ना?
1: हाँ जी हाँ जी, ये
0: बहुत अच्छे। हाँ तो जो शब्दों का इस्तेमाल वो भी सही होना चाहिए शिक्षकों के लिए, ठीक है?
1: सॉरी सर, सॉरी।
0: जी कोई बात नहीं
1: जी। सर मेरी छोटी गुड़िया है, उससे बात करना चाहूंगा एक बार।
0: जी कराइए।
1: जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देना सारी।
0: जी जी जी।
1: नाम बताओ अंकल को।
0: हेलो बेटे, कौन बोल रहे हैं? आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया, आपने पापा से बात कराइए।
1: जी जी सर।
0: तो शिक्षक दिवस कल है, तो आज का जो हमारा विषय है ना,
1: हाँ जी, जी,
0: तो मकसद हमारा यही है कि हमारे गुरु हमें ज्ञान देते हैं, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं। तो हमें अपने गुरुओं का, अपने शिक्षकों का हमेशा सम्मान करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल सर। जैसे कि ना एक सर ने एक और बात बताई थी, जैसे कि हम पुराने भी हो जाए ना, तभी भी कहीं पे भी दिख जाए चरण छूने हैं सर, वो बात हमेशा याद रहेगी।
0: बिल्कुल, ये तो चीज कहने की थोड़ी होती है ना
1: जी,
0: ये तो समझने की।

0: बात है,
1: जी सर,
0: सम्मान दिल में होना चाहिए। जिन्होंने आपकी
1: धन्यवाद
0: जिंदगी
1: जी,
0: बनाई, आपको एक आदर्श नागरिक बनाया,
1: बिल्कुल सर,
0: आपको
1: उन्हें जी बिल्कुल
0: जिंदगी में
1: उन्हें
0: आगे बढ़ना
1: धन्यवाद,
0: सिखाया, तो उनका सम्मान तो दिल में होना चाहिए ना हमेशा।
1: दिल में सर, बिल्कुल सर। और ना सर, एक बात और कहना चाहूंगा,
0: जी
1: आपका ये FM चंडीगढ़ इतना ज्यादा बढ़िया लगता है सर, जैसे कि कल तो आए नहीं का ऑनलाइन ये,
0: जी
1: लेकिन आज ही कर दीजिए आपने, बहुत अच्छा किया सर,
0: चलिए, बहुत अच्छा
1: बहुत
0: लगा
1: बढ़िया
0: आपसे
1: सर,
0: बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन करने
1: थैंक
0: के
1: यू
0: लिए।
1: सर,
0: हेलो
1: थैंक यू, धन्यवाद सर।
0: चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: नमस्कार जी, नमस्कार जी। श्री
0: नमस्कार जी,
2: कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर MN शुक्ला सेक्टर 49 चंडीगढ़ से आपको और आपके आकाशवाणी परिवार को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।
0: जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: आज का दिन जो आपने सब्जेक्ट रखा है अध्यापकों के लिए, वाकई उसके लिए तो बस दो ही बातें मैं कहूंगा। पहला है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
0: जी
2: इसमें सारी बातें आ जाती हैं।
0: बिल्कुल
2: गुरु को ऊपर ब्रह्म के समान या परमात्मा से भी ऊपर माना गया है। अगर वो गुरु, वो अध्यापक उसमें फिट बैठता हो तो,
0: जी
2: क्योंकि समय बदलता गया, समय बदलता गया, उनकी अपेक्षाएं भी बदलती चली गई, लेकिन आज भी ये भावना लोगों के अंदर है और समय बदल गया बहुत ज्यादा। वो कहते हैं, गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, कड़ी कड़ी काढ़े बोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर बाहे चो।
0: जी
2: ये शिष्य को एक कच्चे घड़े के समान, मिट्टी के समान माना गया है, जिसको
0: जी
2: कि वो कुम्हार, कुम्हार की उपमा अध्यापक से दी गई है।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा आपसे
2: और
0: बात करके, क्योंकि समय कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ विचार बांटने के लिए।

0: इस गीत के साथ ही अब आज का लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ समाप्त करने के अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है मीनाक्षी कालिया। हमारा नमस्कार।
1: हेलो हेलो, कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
2: हेलो चंडीगढ़।

0: अभी आप सुन रहे थे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी धमाका। जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। 5 और 25 सितंबर नु लकी ड्रॉ होगा, आज ही खरीदो। TNC अप्लाई।
0: आइए अब सुने प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।
2: नमस्कार, मैं एना कर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारी बेड़ियां में। श्रोताओं, कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी का रास्ता बदल देते हैं। कभी उनकी कही हुई एक छोटी सी बात हमें बहुत आगे ले जाती है, कभी उनकी डांट उस समय तो बुरी लगती है लेकिन बाद में समझ आता है कि उसमें भी हमारी भलाई छिपी थी, और कभी उनका दिया हुआ एक छोटा सा प्रोत्साहन हमें वह करने की हिम्मत देता है जिसके बारे में हमने कभी भी सोचा भी नहीं था। श्रोताओं, ऐसे ही लोगों में से एक हैं हमारे शिक्षक। जी हाँ, आज ये कार्यक्रम उन सभी शिक्षकों को समर्पित है जिन्होंने सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं दिया बल्कि हमें जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया। जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक शिक्षक की भूमिका की, शिक्षक और विद्यार्थी के रिश्ते की, अनुशासन और प्यार के बीच के संतुलन की, और इस बात की कि एक शिक्षक का व्यवहार बच्चे के जीवन पर कितना गहरा असर डाल सकता है। जी हाँ श्रोताओं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम एक गुरु एक रोशनी। जी हाँ श्रोताओं, भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान शिक्षक, दार्शनिक और देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। वे मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है, शिक्षा इंसान की सोच, उसके चरित्र और उसके जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम है। श्रोताओं, कहा जाता है कि जब उनके विद्यार्थियों और मित्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने सुझाव दिया कि उनके जन्मदिन को व्यक्तिगत रूप से मनाने के बजाय इस दिन को शिक्षकों के सम्मान के दिन के रूप में मनाया जाए। जी हाँ श्रोताओं, और इसी विचार से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। यानी यह दिन सिर्फ एक शिक्षक को हैप्पी टीचर्स डे कहने का नहीं है, यह दिन हमें याद दिलाता है कि शिक्षक समाज के भविष्य को तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक सच्चा शिक्षक केवल ये नहीं कहता कि क्या करना चाहिए, श्रोताओं वह अपने व्यवहार और अपने जीवन से भी प्रेम, क्षमा, दया और सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि बच्चे केवल हमारी बातें सुनते नहीं हैं, वे हमारे व्यवहार को देखते भी हैं। अगर शिक्षक बच्चों से सम्मान से बात करता है तो बच्चा भी सम्मान करना सीखता है। अगर शिक्षक अपनी गलती स्वीकार करता है तो बच्चा भी अपनी गलती स्वीकार करना सीखता है। अगर शिक्षक किसी कमजोर बच्चे को प्रोत्साहित करता है तो उस बच्चे के अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। जी हाँ, यही कारण है कि शिक्षक का व्यवहार बहुत मायने रखता है। और यहाँ एक बात हम सभी के लिए सोचने वाली है, शिक्षक होना आसान काम नहीं है। हर दिन शिक्षक के सामने अलग अलग स्वभाव के बच्चे होते हैं, कोई बहुत शरारती हैं, कोई बहुत शांत स्वभाव के हैं, कोई पढ़ाई में तेज, और कभी किसी बच्चे को एक बात समझने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। ऐसे में शिक्षक को कभी कभी डांटना भी पड़ता है, अनुशासन भी रखना पड़ता है, और ये जरूरी भी है। लेकिन बच्चे को सुधारना जरूरी है,

0: साथ ही उससे ये महसूस कराना भी जरूरी है कि मेरे शिक्षक मेरे खिलाफ नहीं है, मेरे साथ है। जी हाँ श्रोताओं, इसी बात को समझने के लिए आइए सुनिए छोटा सा नाटक।
1: आरव, तुमने फिर होमवर्क पूरा नहीं किया?
2: सर वो मैं नहीं कर पाया।
1: आरव, कितनी बार समझाया है कि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो, ऐसा कैसे चलेगा? कल तक पूरा होमवर्क करके लाना।
2: जी सर। पता नहीं सर, मुझे ही क्यों बार बार डांटते रहते हैं। मुझे लगता है मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता।
3: क्या हुआ बेटा, आज इतने चुप क्यों हो?
2: कुछ नहीं माँ।
3: कुछ तो हुआ है, बताओ।
2: अरे आज फिर से सर ने सबके सामने मुझे डांट लिया। मुझे लगता है सर को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ।
3: अच्छा, लेकिन उन्होंने डांटा क्यों?
2: अरे माँ, वो होमवर्क पूरा नहीं किया था ना।
3: तो आरव, गलती किसकी है?
2: हाँ है तो मेरी।
3: देखो बेटा, हो सकता है तुम्हें उनकी डांट अच्छी ना लगी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे तुम्हारे खिलाफ हैं। शायद वो चाहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा और गंभीर हो जाओ।
2: लेकिन माँ, अगर वे मुझे प्यार से समझाते तो?
3: बिल्कुल, तुम्हारी बात भी सही है। डांट के साथ प्यार और समझ हो तो बात दिल तक ज्यादा आसानी से पहुँचती है। तुम कल सर से जाकर बात करना।
2: पर क्या कहूँ?
3: बस अपनी बात शांति से कहना, पूछना कि आप मुझे बताइए कि मैं अपनी पढ़ाई कैसे बेहतर कर सकता हूँ।
2: सर, क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ?
1: हाँ आरव, बोलो।
2: सर, कल आपने मुझे डांटा तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि शायद आप मुझसे कुछ नाराज हैं।
1: मुझे अफसोस है कि तुम्हें ऐसा महसूस हुआ। देखो बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी क्षमता को पहचानो। तुम कर सकते हो, बस तुम्हें थोड़ी मेहनत और नियमितता की जरूरत है।
2: तो आप मुझसे नाराज नहीं हैं?
1: बिल्कुल नहीं बेटा। एक शिक्षक का काम केवल ये कहना नहीं है कि गलती मत करो। हमारा काम ये भी है कि जब तुम गलती करो तो तुम्हें ये बताएं कि उसे कैसे सुधारा जाए। हाँ, कभी कभी मुझे सख्त होना पड़ता है, लेकिन मेरी सख्ती का उद्देश्य तुम्हें डराना नहीं, तुम्हें जिम्मेदार बनाना है।
2: सर, अब मैं समझ गया। मैं

0: हमारा काम ये भी है कि जब तुम गलती करो तो तुम्हें ये बताएं कि उसे कैसे सुधारा जाए। हाँ, कभी कभी मुझे सख्त होना पड़ता है, लेकिन मेरी सख्ती का उद्देश्य तुम्हें डराना नहीं, तुम्हें जिम्मेदार बनाना है।
1: सर, अब मैं समझ गया। मैं भी कोशिश करूँगा कि अपना काम समय पर करूँ।
0: बस यही तो मैं चाहता हूँ। और हाँ, अगली बार अगर मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगे तो बिल्कुल खामोश मत रहना, मुझसे बात करना।
1: जी सर।
0: और याद रखना, गलती करने वाला बच्चा बुरा बच्चा नहीं होता।
1: जी सर, गलती से सीखना भी तो जरूरी है ना।
0: बिल्कुल सही।
2: तो दोस्तों, आपने सुना, कभी कभी शिक्षक की डांट के पीछे चिंता होती है और बच्चे की चुप्पी के पीछे भी कई भावनाएं हो सकती हैं। इसलिए शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की तरफ से थोड़ा सा प्रयास जरूरी है। श्रोताओं, शिक्षक अनुशासन रखें, लेकिन बच्चे की भावनाओं को भी समझें, और बच्चे शिक्षक का सम्मान करें, लेकिन अपनी बात कहने से डरे नहीं, क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, दोनों एक ही तरफ हैं, बच्चे के अच्छे भविष्य की तरफ। श्रोताओं, अब बहुत जरूरी है कि इस रिश्ते में माता पिता की भूमिका भी बहुत महत्व रखती है। अगर बच्चा स्कूल से आकर कहता है कि आज मैडम ने मुझे डांटा, या फिर आज मैडम ने मुझे बहुत गुस्सा किया, या आज सर ने मेरे साथ ऐसा कहा, तो तुरंत यह तय करने की जरूरत नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। पहले बच्चे की बात शांति से सुनिए, उससे पूछिए तुम्हें कैसा लगा, उसके बाद स्थिति को समझिए और जरूरत हो तो शिक्षक से भी शांतिपूर्वक बात कीजिए, क्योंकि बच्चे को ये भरोसा होना चाहिए कि मेरी बात सुनी जाएगी, और शिक्षक को भी ये महसूस होना चाहिए कि माता पिता मेरे विरोध में नहीं, बच्चे के हित में मेरे साथ बात कर रहे हैं। जी हाँ श्रोताओं, आखिर हम सभी एक उद्देश्य के ही हैं, बच्चा पढ़े भी, सीखे भी, खुश रहे और एक अच्छा इंसान भी बने। जी हाँ, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा अनुशासन। जी हाँ, देखिए, बच्चों को केवल प्यार देना भी पर्याप्त नहीं है, और केवल सख्ती करना भी नहीं, बच्चों को चाहिए प्यार भी, सीमाएं भी, स्वतंत्रता भी और जिम्मेदारी भी। जी हाँ श्रोता, उन्हें ये पता होना चाहिए कि गलती करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी गलती से सीखना जरूरी है। उन्हें सवाल पूछने की आजादी हो, लेकिन दूसरों का सम्मान करना भी आना चाहिए। उन्हें अपने सपने देखने की आजादी हो, लेकिन मेहनत और अनुशासन का महत्व भी बच्चे को समझना चाहिए, और यही संतुलन एक अच्छे शिक्षक और एक अच्छे परिवार की पहचान बन सकता है। श्रोताओं, ये नीति वचन है कि बुद्धिमान को शिक्षा दे और वो और भी बुद्धिमान होगा, है ना श्रोताओं? कितनी सुंदर बात है ना। इसका मतलब है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, यही एक अच्छे शिक्षक की खूबसूरती है। वो जो सिखाता है उसे अपने जीवन में जीने की कोशिश भी करता है, और विद्यार्थियों के लिए भी संदेश है, अपने शिक्षक का सम्मान कीजिए, उनकी बात सुनिए, अगर कोई बात समझ में ना आए तो सवाल पूछिए। श्रोताओं, अब एक पल के लिए अपने स्कूल के दिनों को याद कीजिए जरा। जी हाँ, थोड़ी देर रुक जाइए, शांत हो जाइए और थोड़ी देर अपने स्कूल के उन दिनों को याद कीजिए। क्या आपको कोई ऐसा शिक्षक याद आ रहा है जिसने आपको कभी कहा हो, कभी इनकरेज किया हो, या कभी डांटा हो और कहा हो तुम कर सकते हो, या फिर शायद कोई ऐसा शिक्षक जिसने आपकी गलती पर आपको डांट लगाई हो, या फिर उस समय शायद आपको बहुत बुरा लगा हो उस डांट का, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है शायद उस डांट की जरूरत थी, और हो सकता है कि किसी शिक्षक की कोई छोटी सी तारीफ आज भी आपको याद आती हो। श्रोताओं, यही शिक्षक की ताकत है, उनकी कही हुई बातें हमारे साथ स्कूल से बाहर भी चली आती हैं, है ना श्रोताओं? इसी पर एक छोटी सी चुनौती मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी चुनौती ये है, आज अपने जीवन के किसी एक शिक्षक को याद कीजिए। जरूरी नहीं

कि वह आपके वर्तमान शिक्षक हो, कोई पुराने शिक्षक, कोई कॉलेज के प्रोफेसर या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सिखाया हो, उन्हें फोन कीजिए। जी हाँ, फोन उठाइए, उन्हें फोन कीजिए या एक छोटा सा संदेश भेजिए, या सिर्फ ये मत लिखिए हैप्पी टीचर्स डे श्रोताओं, बल्कि ये भी लिखिए कि आपने मेरे जीवन में क्या बदलाव किया। हो सकता है आपका एक छोटा सा संदेश उनके लिए पूरे दिन की सबसे बड़ी खुशी बन जाए।

तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि शिक्षक दिवस केवल एक सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक सम्मान का दिन है। उन दिनों को याद करने का दिन है जिन्होंने हमें पढ़ाया, समझाया, कभी डांटा, कभी प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ने की हिम्मत दी। लेकिन आज का संदेश सिर्फ शिक्षकों के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए भी है और माता पिता के लिए भी, क्योंकि बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षक का ज्ञान, माता पिता का सहयोग और बच्चे की मेहनत तीनों जरूरी है। और शायद आज की पूरी बात को हम कुछ शब्दों में कह सकते हैं, और वो ऐसे, बच्चों को इतना डरा कर मत सिखाइए कि वह सवाल पूछना ही भूल जाए, और इतना भी छोड़ मत दीजिए कि अनुशासन भूल जाए। उसे प्यार, समझ और सही दिशा तीनों की जरूरत है, क्योंकि डांट में भी सुधार हो, अनुशासन में भी सम्मान हो, शिक्षा में भी संवेदनशीलता हो और हर बच्चे को यह एहसास हो, मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैं सीख सकता हूँ और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। श्रोताओं, यही तो शिक्षा की असली खूबसूरती है, जहाँ ज्ञान के साथ इंसानियत भी सीखी जाती है। सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001, और हमारा फोन नंबर है 8527449955। जी हाँ, 8527449955। तो आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।

0: स्पॉन्सर प्रोग्राम अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला प्रोग्राम है लाइव फरमाइशी प्रोग्राम म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेस। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।
1: धीमे इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।

कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। आज इस सफर में आपका हम सफर है अनिल पुंज, और आज बड़ा पावन दिन है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इस प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को आकाशवाणी परिवार की तरफ से बहुत सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी, और श्री कृष्ण जी का दिन हमें सिखाता है कि जीवन को किस तरह से जीना है, सन्मार्ग क्या है, आदर्श क्या है जीवन के, उन्हें किस तरह से साथ लेकर चलना है, उनका अनुसरण करना है। और सबसे बड़ी जो सीख है वो सीख है कर्म ही पूजा है, कर्म कर फल की चिंता ना कर। और हमारे इस प्रोग्राम में भाई उन सभी श्रोताओं को फल जरूर मिलता है, यानी उनकी फरमाइश पूरी होती है जो इस प्रोग्राम में हमें अपनी फरमाइश भेजते हैं। सिलसिलेवार फरमाइश का सिलसिला हम इस प्रोग्राम में चलाते हैं, और आज भी सबसे पहले चूंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, इसी रंग में रंगा हुआ पहला गाना आज के इस प्रोग्राम में आपके रेडियो सेट पर।

सुंदरम फिल्म से ये रचना सुनी। इसके लिए हमें फरमाइश भेजी हतेंद्र दास मिनल, दुर्गेश शिवा महाराजा, अमल बिमल रमेश और इनके बहुत सारे साथी। ये हैं गांव कोडाली असम से, दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, परमणि वर्मा, पुष्पेंद्र और साथ में हैं इनके बहुत सारे साथी। इन्होंने हमें भाटापारा से फरमाइश भेजी है। जनेंद्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से, रूपेश सिंघई, महेश सिंघई, प्रगेश सिंघई और पूरा संघई परिवार। इसी गाने के लिए हमें जो फरमाइश भेजी वो भेजी सेक्टर 9 पंचकुला से रमेश गुलाटी, स्नेह गुलाटी, हिमांशु गुलाटी, देवांशु गुलाटी और चित्रांशु गुलाटी ने, साथ में सिकंदर ने भी फरमाइशें भेजी। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रंग में रंगी रचनाएं भी इस प्रोग्राम में साथ साथ हम शामिल करेंगे। अब बारी है अगले गाने की। ये गाना सरगम फिल्म से हमने चुना है। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

आदर्श नगर बठिंडा से इंजीनियर अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और साथ में है विक्रमजीत ग्रोवर।

सरगम फिल्म के लिए ये फरमाइश हमें मिली है ललिता पाल, हुक्मचंद ईशु और निशु, दुधला मंडी अंबाला कैंट से। सुनिए आप सभी अपनी फरमाइश पर ये गीत।

0: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को अभी आपने सरगम फिल्म से सुना। आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। ये कार्यक्रम, ये फरमाइशी कार्यक्रम होता है और आज के इस प्रोग्राम में दोस्तों हम कोशिश करेंगे उन श्रोताओं की फरमाइश पूरी करने की जो अक्सर इस प्रोग्राम में हमें फरमाइश भेजते हैं लेकिन फरमाइश देर से पहुँचती है, उस क्रम में शामिल नहीं हो पाती। आज हमने सोचा कि कुछ ऐसे नाम हम शामिल करें, ऐसी फरमाइश शामिल करें बाकी नामों के साथ साथ जो अक्सर रह जाती हैं, तो वो फरमाइश हम शामिल करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे, 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: वेलकम बैक दोस्तों, म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन मौके पर जो फरमाइश हम तक पहुंची हैं उनमें ज़्यादातर जो फरमाइश है नंदलाला से जुड़ी हुई हैं, कृष्ण गोपाला से जुड़ी हुई हैं। ये फरमाइश जो अब हम पूरी करने जा रहे हैं, हमें लगता है कि शायद पहली बार ये फरमाइश हमें मिल रही है। पहलगाम कश्मीर से ये फरमाइश हमें मिली है और ये हमारे श्रोता हैं पहलगाम से, परजादा मिराज उद्दीन, नजमुद्दीन, कैसर उद्दीन और इनके बहुत सारे साथी। संजोग फिल्म से ये गाना सुनवाने के लिए कह रहे हैं, तो आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत पहलगाम कश्मीर से हमारे श्रोताओं के लिए।

लता मंगेशकर की आवाज़ में संजोग फिल्म से ये गाना अभी आपने सुना। पहलगाम कश्मीर से हमारे श्रोताओं की फरमाइश पर ये गाना हमने प्ले किया, ये रचना प्ले की। और आज कृष्ण गोपाला नंदलाला से जुड़ी हुई रचनाओं की फरमाइश मिली है। जाहिर सी बात है कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन मौके पर ये फरमाइश तो आनी थी और आज ही प्रोग्राम की भी बारी है। तो चलिए इसी सिलसिले में एक और हमारे नियमित श्रोता हैं, उनकी फरमाइश पूरी करते हैं। अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविक ढींगरा, पंचकूला सेक्टर 11 से अतुल शर्मा और चुग परिवार ने हमें सेक्टर 9 से फरमाइश भेजी और अतुल शर्मा ने सेक्टर 11 से। तो आपकी फरमाइश पर अमर प्रेम फिल्म की ये कालजयी रचना लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: अमर प्रेम से अभी आपने लता मंगेशकर को सुना, और एक हमारे श्रोता हैं सुखचैन सिंह पवार सनौर से। ये कहते हैं कि हमारे नाम किसी भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में किसी भी ऐसी रचना में शामिल कर दिए जाएं, तो आपका नाम हम इस रचना के साथ शामिल कर रहे हैं। साथ में हैं हरमनजोत कौर, मनजोत कौर और जोबनप्रीत सिंह सनौर से। एक इस गाने से पहले हमने गाना प्ले किया था संजोग फिल्म का, उसके लिए हमें फरमाइश मिली थी श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा की भी। तो गाना तो आप सबने सुन ही लिया होगा, आपके नाम हमने शामिल कर दिए हैं। अब यहाँ एक छोटा सा अंतराल, अंतराल के बाद अगली फरमाइश की बारी।
1: अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि हमारे भत्ते पर जो नया मजदूर आया है उसके हाथ पैरों पर बहुत से दाग हैं, उसे इन पर चोट लगने से भी दर्द नहीं होता।
2: अरे ये तो कुष्ठ रोग का लक्षण है, तुम उसे अभी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाओ।
3: यदि आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में कुष्ठ रोग का कोई भी लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं। यदि संदिग्ध व्यक्ति में कुष्ठ रोग पाया गया तो सरकार द्वारा सूचित करने वाले व्यक्ति को 250 रुपए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
0: वेलकम बैक दोस्तों, म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं और फरमाइश पूरी करने का सिलसिला जारी है। और ये फरमाइश हमें भाटापारा छत्तीसगढ़ से मिली है हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू की। इन्होंने भी श्री कृष्ण कन्हैया के रंग में रंगी एक रचना सुनवाने के लिए कहा है। मिस मैरी फिल्म से ये रचना है। आवाजें हैं महेंद्र कपूर और साथियों की। ये रही आपके रेडियो सेट पर। मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में ये रचना

अभी आपने मिस मैरी फिल्म से ये रचना सुनी महिन मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। और अब अगली फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, ये हमारे श्रोता हैं उत्तम कुमार बघेल, रुखमणी बघेल, साहिल भारती बघेल, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से इन्होंने फरमाइश की है। खुददार फिल्म का गाना सुनवाने के लिए कहा है। किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में ये गीत है आपके रेडियो सेट पर।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में अभी आपने खुददार फिल्म से ये गीत सुना। और दोस्तों, श्री कृष्ण जी की लीलाएं अपरंपार हैं और फिल्मी गानों में तो ये इतनी खूबसूरती से शामिल की गई हैं कि हमारे रग रग में ये रच बस गई हैं। तभी तो आज के इस प्रोग्राम में ढेर सारी फरमाइश इन्हीं लीलाओं को समर्पित है। अभी कुछ देर पहले हमने संजोग फिल्म की एक रचना प्ले की थी, यशोदा का नंदलाला। इसके लिए हमें एक और फरमाइश नजर आई है, ये भुतक छार लोरमी छत्तीसगढ़ से दुर्गेश मरकाम निर्मला दीपक प्रीतम और धनराज मरकाम की। तो दोस्तों, फरमाइश तो हम पूरी कर चुके हैं, गाना हम प्ले कर चुके हैं, आपकी फरमाइश हमें अभी नजर आई है। तो इस तरह से आज ये फरमाइश का सिलसिला पूरा हो रहा है और ऐसी ही एक और रचना शामिल कर रहे हैं दोस्तों। ये सेक्टर 20 से चंडीगढ़ से लिखने वाले हैं विशाल कुमार, विकास कुमार और इनके बहुत सारे साथी। सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का गाना इन्होंने प्ले करने के लिए कहा है। लीजिए सुनिए ये गीत। लता मंगेशकर के स्वर में

सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से ये रचना भी आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज में। और दोस्तों, श्री कृष्ण से जुड़ी लीलाओं को समर्पित आज का प्रोग्राम पूरी तरह से है, क्योंकि आपकी फरमाइश पर फरमाइश ऐसी हमें मिल रही है और ये फरमाइश भी छत्तीसगढ़ से मिली है जो अगली हम पूरी करने वाले हैं। आप हैं मुंडा टोला डोंडी लोहारा छत्तीसगढ़ से लिखने वाले हैं। डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम, माहिर नेताम, आपने जो रचना सुननी चाहिए है वो है हम साथ साथ हैं, इस फिल्म से सुनिए।

कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में अभी आपने हम साथ साथ हैं इस फिल्म से ये रचना सुनी। हमारे ये श्रोता हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष। इन्होंने भी जो फरमाइश सुननी चाहिए थी वो हमने पूरी कर दी है, लेकिन आपके नाम अभी हमने शामिल किए हैं। अब अगली जो फरमाइश है वो छोटी बहू फिल्म से हमें भेजी है। हमारे ये श्रोता हैं अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी ने बेनी पट्टी मधुबनी बिहार से छोटी बहू फिल्म से जुड़ी रचना आपने सुनवाने के लिए कहा है, तो सुनिए।

0: अभी आपने छोटी बहू फिल्म से ये रचना सुनी किशोर कुमार की आवाज़ में, और इसके लिए हमें कुछ और फरमाइश मिली इसी फिल्म के लिए और इसी रचना के लिए। बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि, रोशनी सारवा। उरेटा लोहारा जिला बालोद से देवशंकर तामुरिया, प्रभा देवी तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा, माधुरी मास्टर, अल कबीर। दोस्तों अब प्रोग्राम का समय तो लगभग समाप्ति की ओर है और आज इस प्रोग्राम में ज़्यादातर जो फरमाइश हमारे पास रही वो रही श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी हुई, क्योंकि दिन भी आज वही है और फरमाइश पूरी करने का दिन भी यही है। तो अब जिन श्रोताओं की फरमाइश पूरी नहीं हो सकी वो कल के प्रोग्राम में अपनी फरमाइश हमें भेजें। फरमाइश भेजने का सिलसिला जो आप शुरू करेंगे वो सुबह 10 बजे से करेंगे और 10 बजे से पहले भेजी गई फरमाइश हम पूरी नहीं कर पाएंगे। 10 बजे के बाद की जो फरमाइश है वो पूरी होगी इस प्रोग्राम के लिए, यानी जब हम आपसे कहें अपलोड करने के लिए अपनी अपनी फरमाइश, आप तभी ही अपनी फरमाइश इस प्रोग्राम के लिए भेजें। तो अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी को अनिल पुंज कहता है नमस्कार।
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस, इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
0: अभी आपने प्रोग्राम सुना म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12 बजने को है। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भी सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
3: I am very happy to announce that GSLV.
4: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
3: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग important strategic data for our country.

नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5,053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में डीएनए जांच भी शुरू की गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए 3,000 रुपये सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यभर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सरद्वत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के दौरान अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। देश भर में आज जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती के मुंबई स्टेशन से रिले करेंगे।
2: दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम अभिनेता ऋषि कपूर को और गायक संगीतकार आदेश श्रीवास्तव को याद कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ें। फिल्म का नाम है बॉबी।
3: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था कभी कभी। साहिर लुधियानवी के बोल थे, खय्याम साहब का संगीत था। और अब लेते हैं इस कार्यक्रम में एक अंतराल।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए। गाने वाले कलाकार किशोर कुमार और साथी, फिल्म का नाम कर्ज़।

0: में घटित होता है, शाम को बारूद में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया, उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत सुरेश वाडकर की आवाज में, फिल्म का नाम है प्रेम रोग। गीत रचना संतोष आनंद की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

कार्यक्रम का अगला गीत शिव हरि का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, आशा भोसले और विनोद राठौड़ की आवाज़ें। फिल्म का नाम है चांदनी।

的人。

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान। कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
1: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेलुलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गनफॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलेवन इन वालर इवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंदाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत आदेश श्रीवास्तव और वसुंधरा का गाया हुआ, फिल्म का नाम है आंखें। गीत को प्रसून जोशी ने लिखा है और धुन आदेश श्रीवास्तव की है।

0: के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे, मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आदेश श्रीवास्तव के संगीत निर्देशन में हम आपको समीर का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है राजनीति। आवाजें आदेश श्रीवास्तव, शशि और साथियों की।

ये आवाजें थी आदेश श्रीवास्तव, शशि और साथियों की। फिल्म का नाम था राजनीति। गीतकार थे समीर और संगीतकार आदेश श्रीवास्तव। इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
1: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। एक बजा है, लीजिए प्रस्तुत है हमारे अब से लेकर आज रात तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में और फिर 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से। प्रादेशिक समाचार शाम को भी प्रसारित होंगे, पहले शाम 6:10 पर हिंदी में और फिर शाम 6:20 पर पंजाबी में। कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 1:15 पर। दिन में 1:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर। ये कार्यक्रम हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। दिन में 2 बजे रिले होगा कार्यक्रम वंदे मातरम एक जयघोष वहीं से। दिन में 2:15 पर, शाम 5 बजे, शाम 6 बजे और रात 8:45 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम सदाबहार नगमे रिले होगा दिन में 2:30 पर मुंबई केंद्र से। कार्यक्रम हेलो सहेली का प्रसारण समय रहेगा दोपहर 3 बजे वहीं से।

शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम गीतों भरी कहानी। आज इस कार्यक्रम में कहानी प्रसारित होगी आखिर कब तक, लेखिका है रश्मि वर्मा। शाम 5:20 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे प्रसारित किया जाएगा हमारे केंद्र से। शाम 5:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम अमृतवाणी होगा शाम 6:30 पर। कार्यक्रम जयमाला रिले होगा शाम 7 बजे विविध भारती के मुंबई केंद्र से। शाम 7:45 पर हमारे केंद्र से प्रादेशिक मुख्य समाचार सुनने के बाद आप सुन पाएंगे पंजाबी गीत, और फिर रात 10:30 पर प्रादेशिक मुख्य समाचार के बाद कार्यक्रम सुर सांझ में आप सुनेंगे पंजाबी गीत।

हवा महल कार्यक्रम में रात 8 बजे आप सुनेंगे नाटिका हीरों का हार। ये कार्यक्रम हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम चित्रलोक रिले होगा रात 8:15 पर वहीं से। रात 9 बजे सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए।

रात 9:30 पर होगा कार्यक्रम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम संगीतकार आदेश श्रीवास्तव पर केंद्रित रहेगा। कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे रात 10 बजे। अभी आप सुन रहे थे आज रात तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

107.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हमारे केंद्र से और उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करेगा।
1: आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट GSLV।
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कल पंचकुला के सेक्टर 5 में सुदेश भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित समारोह में नमो क्रिकेट लीग 2026 की ट्रॉफी का अनावरण किया। नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही नमो क्रिकेट लीग में 5 राज्यों की 3,000 से अधिक टीमें हिस्सा लेंगी। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हुए क्रिकेट में भी हाथ आजमाया। मुख्यमंत्री ने खेल प्रतिभाओं और कलाकारों को सम्मान स्वरूप क्रिकेट और बैट बॉल भेंट कर उनका हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी से नशा मुक्ति का संदेश व्यापक स्तर पर जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आयोजन इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसका शुभारंभ 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर किया जा रहा है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन त्यौहार पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज एक सोशल मीडिया संदेश में सभी को जन्माष्टमी की बधाई दी।
3: मैं जन्माष्टमी के पावन पर्व पर सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही सबके सुखी स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना करता हूं। जन्माष्टमी का पर्व ऐसा पवित्र अवसर है जब हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को श्रद्धा व आस्था के साथ याद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हम सबके आराध्य हैं। उन्होंने जहाँ अपना बचपन वृंदावन अथवा मथुरा और आसपास के क्षेत्रों में बिताया, वहीं हरियाणा की पावन धरती भी उसके चरणों से पवित्र हुई थी।
0: आज जन्माष्टमी पर हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में मंदिरों को फूलों से सजाया गया है। अम्बाला से हमारे संवाददाता ने बताया कि सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना जारी है। लोग मंदिरों में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कर रहे हैं और भजन कीर्तन का प्रवाह चल रहा है। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह भंडारों का आयोजन भी किया गया है। अम्बाला छावनी के सनातन धर्म मंदिर में रात को भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित विभिन्न झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। फरीदाबाद में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी पलवल के थाना चांदहट के एएसआई

उश्यार सिंह के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया है। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक शिकायत के आधार पर उसे 7 जुलाई को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जांच पूरी होने के बाद कल आरोप पत्र दाखिल किया गया। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज से 6 तारीख तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इस दौरान चंडीगढ़, पंचकूला, अम्बाला, यमुनानगर व करनाल सहित हरियाणा में अलग अलग स्थानों पर बारिश होने की संभावना है।

0: येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इस दौरान चंडीगढ़, पंचकूला, अम्बाला, यमुनानगर व करनाल सहित हरियाणा में अलग अलग स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। पलवल जिले के हथीन खंड की ग्राम पंचायतों में 7 सितंबर से 1 अक्टूबर तक विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। उपमंडल अधिकारी हरिराम ने बताया कि इन सभाओं के जरिए परिवार पहचान पत्र के लिए जरूरी सत्यापन किया जाएगा, जिसमें अंत्योदय अन्य योजना के परिवार, 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवार और सदस्यों के व्यवसाय का सत्यापन शामिल है। इसका उद्देश्य पात्र ग्रामीणों को घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और सही आंकड़े अपडेट करना है। हरियाणा के सहकारिता क्षेत्र में वित्तीय प्रदर्शन, डिजिटल सेवाओं, ग्रामीण क्षेत्र में सेवा वितरण, अनाज भंडारण तथा सहकारी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि लाभ में चल रही प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों पैक्स की संख्या 33 से बढ़कर 51 हो गई है, जबकि प्रथम चरण के तहत चिन्हित सभी 710 पैक्स का कंप्यूटरीकरण पूरा हो चुका है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसीं चंचल शर्मा तों प्रदेशक खबरां सुनो। उपराष्ट्रपति अते पंजाब यूनिवर्सिटी दे उपरदान ते एक्स ऑफिशियो सीबी राधा कृष्णन अज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी दे दौरे ते ने। इस मौके पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विच हो रहे समारोह च श्री राधा कृष्णन पंजाब दे राजपाल गुलाब चंद कटारिया अते साबका केंद्रीय मंत्री मनीष तिवाड़ी ते होर पतवंते भी शामिल ने। उपराष्ट्रपति पंजाब यूनिवर्सिटी टैक इनोवेशन फोरम का भी उद्घाटन करेंगे, जो यूनिवर्सिटी के खोज काढ़ ते स्टार्टअप इकोसिस्टम में मजबूत करने विच एक वड्डा कदम है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस का त्यौहार जन्माष्टमी आज पंजाब समेत देश भर में श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है।

0: कि आईटीआई ते पॉलिटेक्निक नूं रोजगारमुखी संस्थावां च बदलिया जा रहा है। पंजाब दे वित्त मंत्री अते मुलाजमां दे मसले हल करन वास्ते बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी दे चेयरमैन हरपाल सिंह चीमा ने कल वख वख मुलाजम जथेबंदियां नाल अहम मीटिंगां कीतियां। उन्हां दीआं मंगां ते चिंतावां नूं सुनदिआं वित्त मंत्री ने संबंधित विभागां नूं ढुकवें हल लभण लई तुरंत दिशा निर्देश दित्ते ने। जथेबंदियां वल्लों उठाए गए मसलिआं उत्ते विचार करदिआं वित्त मंत्री ने संबंधित विभागां नूं जायज़ मंगां दे हल संबंधी तजवीज़ां कैबिनेट सब कमेटी नूं भेजण दे निर्देश दित्ते। क्रिकेट विच भारत ने महिला एशिया कप के सत्तवें मैच में हांगकांग की टीम उत्ते 137 दौड़ों की वड्डी जित दर्ज की है। इस जित नाल भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सैमीफाइनल में जगह बना ली है। दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम च टॉस हारन तो बाद बल्लेबाजी करदिआं भारतीय टीम ने सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना के सैकड़े की बदौलत 5 विकटां ते 193 दौड़ा बनाईआं। स्मृति ने सिर्फ 64 दौड़ों ते 124 दौड़ों का शानदार पारी खेडी। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖਬਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @ARNU ਜਲੰਧਰ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ 1:40 ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: FM 107.2 MHz पर हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रही हैं। श्रोताओं, 1:15 हुए हैं, अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर हार्दिक मंगल कामनाएं।

0: राधा कृष्ण के प्रेम की सुंदर सी अनुभूति लिए हुए ये गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज़ में हमसाया फिल्म से। अगला गीत आपको सुनवाते हैं इस संदेश के बाद।
1: धीमे इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
0: कृष्ण की मनमोहिनी मूरत सबका मन मोह लेती है, न जाने कैसा आकर्षण है इस सूरत में, इस मूरत में, कि मन मतवाला हुआ जाता है।

कृष्ण नाम में ही प्रेम है और कृष्ण नाम में ही शांति। जो दिल से कृष्ण को पाले बस उसका जीवन सुंदर हो जाता है।

अपने सभी श्रोताओं को एक बार फिर से आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम यहां समाप्त कर रहे हैं।

0: Piles Hospital. कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 1:30 हुए हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।
2: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमाका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 5-25 सितंबर लकी ड्रॉ होगा आज ही खरीदो TNC अप्लाई
3: अरोड़ा प्लाईवुड
4: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स सीलिंग्स एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स सब एक ही छत के नीचे
3: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़ कॉल 9876277700।
1: अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरीला सफर। ये कार्यक्रम हम आपके लिए विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।
5: जैसे कि आज कुछ गीत हमने चुने हैं सुंदर कविता के रूप में। और हमारा दूसरा सवाल था कि हिंदी के किस कवि की या किस गीतकार की रचना आपको सबसे ज्यादा पसंद है और कौन सी पंक्तियां आपको आज भी याद है। जैसे हमें रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी की जो पंक्तियां हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने एक तरह से चेतावनी दी थी दुर्योधन को अंतिम संदेश के रूप में कि याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या कि मरण होगा। ये पंक्तियां मुझे बहुत पसंद आती हैं। और एक और जैसे जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये पंक्तियां आज भी हमारे दिलो दिमाग पर अंकित हैं और ताउम्र रहेंगी। तो आपके जीवन में ऐसी कौन सी काव्य पंक्तियां हैं जिन्हें आप नहीं भूल पाए हैं। सुरीला सफर के इस सफर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं जसपाल सिंह की आवाज में फिल्म गीत गाता चल का ये सुंदर सा काव्यात्मक गीत। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन जिन्होंने बहुत सारी कविताएं फिल्मी गीतों के रूप में हमें दी हैं।

जी हाँ, तो रविंद्र जैन का ये जो गीत है प्रकृति और जीवन के प्रति कितनी सुंदर तरीके से लिखा गया है, जिसमें धरती को माँ, आकाश को पिता और पूरी सृष्टि को परिवार मानने का भाव है। यानी कितनी सुंदर कविता एक मनुष्य और प्रकृति के आत्मीय रिश्ते को लेकर रविंद्र जैन साहब ने लिखी। तभी तो इन गीतों को आज भी हम सुनना पसंद करते हैं, गुनगुनाना पसंद करते हैं, और यूं कहें कि ये गीत अमर से हो गए हैं, है ना? क्योंकि हिंदी कविता जो एक कवितामय गीत लिखे गए, जहां हमें कविता की सुगंध, कविता का रसास्वादन भी होता है। हमारे श्रोताओं ने अपने विचार हम तक पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने बहुत पावन प्रेम इबारत पेश की है। कृष्ण तो प्रेम के साकार रूप है, वे पराक्रम के प्रवर्तक भी हैं। उनकी गीता हमारा आत्मविश्वास और आत्मज्ञान बढ़ाती है। जन्माष्टमी पर आपने सभी को बधाई दी है। देखिए, हमने तो 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम में आपके लिए खास कार्यक्रम भी पेश किया था, जो कि श्री कृष्ण को समर्पित किया। हमने उन्हीं के भजन भक्तिपद आपके लिए पेश किए थे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं ने उस कार्यक्रम को सुना होगा। वहीं एक श्रोता लिखती है कि हमें स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शून से, ये पंक्तियां जो कवि गोपाल दास नीरज की हैं, वो सबसे ज्यादा पसंद हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की हिमालय इतनी सुंदर है कि उसको आज तक भूल नहीं पाते हैं मंदाकिनी जी। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चंचल, शीतल, निर्मल, कोमल, संगीत की देवी, स्वर सजनी, ये पंक्तियां जो है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से, ये इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा जो कविता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के, है ना, वो कविता इन्हें बेहद पसंद आती है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे स्कूल में पढ़ी जयशंकर प्रसाद की द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी की पंक्तियां याद आ रही हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ये इन्हें पंक्तियां बेहद पसंद आती है और इन्हें आज भी याद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि तुम गगन के चंद्रमा, मैं धरा की धूल हूँ, कोरा कागज था ये मन मेरा, ये पंक्तियां इन्हें बेहद अच्छी लगती है। वही एक श्रोता को चंदन सा वदन, ये पंक्तियां बेहद पसंद आती हैं फिल्मी गीत के रूप में। और एक श्रोता ने लिखा है कि सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम, ये पंक्तियां जो हैं गीत की इन्हें बेहद पसंद आती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपका जो सवाल है उसका जवाब, यानी प्रश्न जो पहला था उसका जवाब दे रही है कि कवि सोहनलाल द्विवेदी जी की कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ननी चिट्ठी जब दाना लेके चलती है, ये संदेश इन्हें बेहद पसंद आता है। और हमारे दूसरे सवाल का जवाब देती है कि कवि प्रदीप जी, सचिन दा, नीरज जी और भी बहुत से गीतकार हैं जिनके प्रेरणादायक गीत इनको पसंद आते हैं। बहुत सुंदर पसंद है हमारे श्रोताओं की। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिल्म नवरंग का ये सुंदर सा गीत आपको सुनवाते हैं। आशा भोसले और मन्ना डे का गाया हुआ पंडित भरत व्यास के बोल हैं। जी हाँ, पंडित भरत व्यास, जिन्होंने न जाने कितने गीत हिंदी कविता के रूप में लिखे हैं और इसे संगीत में ढाला है सी रामचंद्र ने।

करके स्नान आई। बिछड़ा वो मीत आया, जीवन का गीत आया, दो आत्माओं के मिलन का दिन पुनीत आया। सूरत है मेरे सपनों

हमारे श्रोताओं ने सवालों का जवाब देना शुरू भी कर दिया था और अभी भी लगातार दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हिंदी कविता में रुचि रखते हैं, यानी आपके भीतर भी कविता बहती है किसी न किसी रूप में। एक श्रोता ने लिखा है कि हाँ, ये तो हमने पढ़ लिया था, आप लिखते हैं कि आज की इबारत अलग अलग मोड़ के गीतों से आपने बुनी है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे गीतकार शैलेंद्र और पंडित प्रदीप जी के गीत बहुत अच्छे लगते हैं, और सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, और पंडित प्रदीप जी की देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, ये पंक्तियां इन्हें बेहद पसंद आती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे फिल्म कादम्बिनी का वो गाना जिसे अमृता प्रीतम ने लिखा था आशा भोसले की आवाज में, अंबर की एक पाक सुराही, ये बहुत पसंद है, बहुत सुंदर गीत चुना है आपने। एक श्रोता लिखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की कविता का अंश जो है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, ये पंक्तियां इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं श्रोता एक लिखती है कि मेह बरसने वाला है मेरी खिड़की में आजा तितली, महादेवी वर्मा जी की कविता है और इन कविताओं से ये प्रभावित हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ज्योति कलश छलके का मतलब है ज्योति का प्रकाश कर और बिखरे, अंधेरा गायब हो जाए अर्थात बुराई पर अच्छाई की जीत हो, ये पंक्तियां इन्हें प्रभावित करती हैं। वहीं एक श्रोता को अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, गोपाल दास नीरज की पंक्तियां इन्हें बहुत पसंद है। एक श्रोता को महादेवी जी की कविता में चंदा तू चांदनी ये पंक्ति बहुत पसंद है। वहीं पंडित भर व्यास जी के बारे में एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी कविता के माध्यम से फिल्मी गानों को उन्होंने स्वर्णिम युग दिया है, रामराजे फिल्म का लता जी का गाया एक गाना पंडित भरत व्यास जी का लिखा हुआ बहुत ही सुंदर है, सोजा सोजा यानी नींद के समय का ये अद्भुत गीत है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह, प्रकृति सौंदर्य का जीवंत सुंदर चित्रण इस गाने में अनुपम है, ज्योति कलश छलके अंतिम अंतरा में ज्योति यशोदा घर की गैया सुनते ही बनता है, भाव विभोर कर देता है ये गाना, बिल्कुल। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मुझे एक पंक्ति बहुत अच्छी लगती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, अरे बस इतना ही। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखूं उतला, लाल ली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, ये पंक्तियां इन्हें बहुत पसंद है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि भाभी की चूड़ियां का ज्योति कलश छलके ये कविता रूपी जो गीत है वो पसंद करते हैं। वही एक श्रोता ने लिखा है कि प्रिय विविध भारती परिवार, आपका ये कार्यक्रम सुरीला सफर बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है, धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि जहां न पहुंचे वहां पहुंचे कवि, ये पंक्तियां इन्हें पसंद आती हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी आज का आपका विषय बहुत ही सुंदर है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि विशुद्ध हिंदी शब्दावली गीत से कार्यक्रम का श्री गणेश अति उत्तम शुभारंभ, श्रोतागण हर्षित फुल हो मुग्ध हो गए हैं, अरे वाह। और वहीं एक श्रोता

लिखते हैं कि मंदाकिनी जी आपको और समस्त श्रोता मित्रों को हम नमस्कार करते हैं। आज आप बहुत दिनों बाद उपस्थित हुई हैं। हो गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और कविता का आनंद लेते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल हैं, आवाज मुकेश की, और फिल्म का नाम सत्यम शिवम सुंदरम।

जी बहुत ही मधुर गीत अभी हमने सुना और कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच गए हैं। हमारे श्रोता कुछ श्रोता हमसे कुछ पूछ रहे हैं कि क्या बात है आप कई दिनों के बाद सुरीला सफर पर आए हो। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम छुपी हो कहां, हम आपकी आवाज सुनने को तड़प रहे हैं यहां। एक श्रोता लिखते हैं बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तक है श्रोता समूह वाला, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए आपके। हुए ना। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आप कार्यक्रम में आ गए हो तो और भी अच्छे हो गए हैं हम। अरे वाह क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि कविता की शक्ति को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है लेकिन आपने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। नहीं नहीं ये आपकी गलतफहमी है, हमने तो आपको कुछ नहीं समझाया बल्कि एक कार्यक्रम लेकर आपके साथ सुरीले सफर पर निकल पड़े हैं बस इतना ही ताकि जीवन में थोड़ा सा हम भी कवितामय हो जाए। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत दिनों के बाद सुरीला सफर लेकर आई है क्या बात है। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि आपके अनुपम सुंदर निबंध से चुने हुए कुछ गीत हमें आज बेहद पसंद आए हैं क्या बात है। हमारी इबारत को आज श्रोताओं ने निबंध कह दिया है, किसी ने कहा है कि पूरी रात जग कर लिखी है आपने, किसी ने कहा है कि आज पूरा दिन लग जाएगा इस इबारत को पढ़ने और जवाब देने में। चलिए आप जैसा समझे सर आंखों पर, आपकी हर बात आपका हर भाव, बस यही होना चाहिए कि इस तरफ से हमारी जो कोशिश है वो कम नहीं होनी चाहिए और आपकी तरफ से क्या आपका प्यार कम नहीं होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम का अंतिम गीत आपके लिए प्रदीप की आवाज, फिल्म का नाम नास्तिक, गीतकार प्रदीप और संगीत सी रामचंद्र का।

दोस्तों, कवि प्रदीप द्वारा कविता की शैली में लिखा गया यह गीत देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, मानवता को आईना दिखाने वाली एक मार्मिक कविता के रूप में लिखा

गया है। आप क्या सोचते हैं बताइएगा कभी। फिलहाल सुरीला सफर कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 44वीं कड़ी।

0: बैरिस्टर जिन्ना द्वारा रखे गए मुद्दों में विसंगति दिखाते हुए इस्लाम धर्म के अध्येता और विचारक मौलाना रजा उल करीम ने कुछ लेख लिखे। कालांतर में उन बंगाली लेखों का संग्रह बंकिम चंद्र ओ मुसलमान समाज नाम से 1944 में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक के एक अध्याय में उन्होंने कहा,
1: से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साधारण बातों में भी मूर्ति पूजा का हवा खड़ा करके आम मुसलमानों का दैनिक जीवन दूषित करते हैं। माता पिता के चरणों को हाथ से छूकर उनके प्रति भक्ति भाव दिखाना ही मूर्ति पूजा है। श्रद्धा के पात्र व्यक्तियों के सामने भक्ति भाव से नतमस्तक हो तो वो भी मूर्ति पूजा ही है। सजावट के लिए कमरे में कोई तस्वीर लगाना भी मूर्ति पूजा ही है। क्या ऐसा मानना चाहिए? ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति वंदे मातरम जैसे अत्यंत निर्दोष और सर्वांग सुंदर गीत को सांप्रदायिक गीत कहते हैं, परंतु जिनके पास उदारवादी दृष्टिकोण है उन्हें वंदे मातरम गीत को सम्यक दृष्टि से ही देखना चाहिए। वंदे मातरम जैसे सर्वांग सुंदर गीत का मूर्ति पूजक कहकर जो विरोध होता है उसका उद्देश्य पवित्र तो है ही नहीं, इसलिए इस गीत की भाषा तो ऊपरी बहाना है। उसका असली कारण राजनीतिक ही है। उसे देखने के लिए उदार दृष्टि, मुक्त विचारधारा और चिंतनशीलता की आवश्यकता है, और इन्हीं बातों के अभाव के कारण इस पर किसी ने भी अंतर्मुख होकर विचार नहीं किया है।
0: रजाउल करीम ने इस प्रकार वंदे मातरम पर लगे इन आक्षेपों को तर्कसंगत ढंग से खंडित किया।
2: मुस्लिम समाज की वंदे मातरम के प्रति इस भूमिका के विरोध में सबसे प्रखर भूमिका हिंदू महासभा ने निभाई। स्वतंत्रता वीर सावरकर की रत्नागिरी में नजरबंदी से मुक्ति के बाद हिंदू महासभा की राजनीतिक सक्रियता बढ़ने लगी। उन्हीं दिनों में लोकमान्य तिलक के अनुयायियों ने लोकशाही स्वराज्य पक्ष शुरू किया।

0: उस दल के सहयोग से हिंदू महासभा ने वंदे मातरम गीत को राष्ट्र गीत का दर्जा दिया जाए, इसलिए वंदे मातरम दिवस मनाकर आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। मुस्लिम लीग का वंदे मातरम गीत के प्रति जो विरोध था, उसे तोड़ने के लिए 26 अक्टूबर 1937 का दिन वंदे मातरम दिन के रूप में मनाने का निश्चय किया गया।
1: उसी समय मैडम कामा ने स्टुटगार्ट में 1907 में फहराया हुआ वंदे मातरम शब्द लिखा हुआ भारत का ध्वज पेरिस से सरदार सिंह राणा के पास से केसरी के तत्कालीन संपादक और लोकमान्य तिलक के नाती गवी केतकर के पास 22 अक्टूबर को पहुंचा। वंदे मातरम दिन के अवसर पर पुणे में पहुंचे इस ध्वज की बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद हुई सभा में स्वतंत्रता वीर सावरकर और सेनापति बापट के भाषण हुए।
0: जैसे मुस्लिम लीग मुसलमानों का संगठन थी, वैसे ही हिंदू महासभा को हिंदुओं का प्रतिनिधि दल माना जाने लगा। 1937 से 1939 के काल में मुस्लिम लीग के वर्चस्व के कारण बंगाली हिंदुओं पर एक प्रकार का दबाव और आतंक छाने लगा। कांग्रेस की दोहरी नीति के कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे बंगाल के नेता हिंदू महासभा की ओर खींचे चले गए और बंगाल में हिंदू महासभा का प्रभाव बढ़ने लगा। 1938 में नागपुर में हुए हिंदू महासभा के 20वें अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में सावरकर ने शुरुआत में ही हिंदू राष्ट्र और वंदे मातरम की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार हो जाओ, ऐसा आवाहन किया। संपूर्ण वंदे मातरम गायन के साथ ही उनके भाषण का समापन हुआ। ये गायन नागपुर के गायक पंडित विनायक अंभईकर ने खंबावती राग में किया था। इस घटना के समय अंभईकर मात्र 26 वर्ष के थे। बचपन से ही वे वंदे मातरम के प्रेम से ओतप्रोत थे। 1926 में 14 वर्ष की आयु में नागपुर के बैरिस्टर मोरोपंत अभ्यंकर के घर गांधी जी के सामने छोटे विनायक ने संपूर्ण वंदे मातरम गाकर सुनाया था और उसके बाद शास्त्रीय गायन में बड़ी निपुणता प्राप्त कर मात्र 17 वर्ष की आयु में संगीत सुधाकर ये संगीत की प्रतिष्ठित उपाधि उन्होंने प्राप्त की थी। स्कूल के दिनों में जॉर्ज नृपा गावे सद्भावे वंदुनिया पदा ये पंचम जॉर्ज की कविता गाने वाला विनायक आगे चलकर वंदे मातरम का कट्टर समर्थक बन गया।
1: 1938 में हिंदू महासभा के कलकत्ता अधिवेशन की तरह ही सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में 1938 के हरिपुरा में हुए कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण वंदे मातरम का गायन किया था। हिंदू महासभा और कांग्रेस जैसी सभी विचारधाराओं के अलग अलग दलों के कार्यक्रमों में उन्हें वंदे मातरम गाने के लिए आग्रह पूर्वक आमंत्रित किया जाता था। खनकदार फिर भी विलक्षण मधुर आवाज, अभ्यासपूर्ण और भाव रसपूर्ण गायकी के कारण उनका वंदे मातरम लोकप्रिय हो गया।

1938-39 का कालखंड और भी अधिक संघर्षमय बन गया था। दिनांक 7 फरवरी 1939 को आंध्र प्रदेश के चपलमुंडा के कारागार में अनेक युवा आंदोलनकारियों को रखा गया था। शाम के समय इन राजबंदियों ने भजन के साथ वंदे मातरम गाना शुरू किया। जेल अधिकारी हॉलिंग्स ने वंदे मातरम गाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। फिर भी रामचंद्र राव नामक कैदी वंदे मातरम गाता ही रहा। जेल अधिकारियों ने उसे 17 कोड़ों की सजा दी। उस समय भी रामचंद्र राव वंदे मातरम के नारे लगाते ही रहे।

0: भजन के साथ वंदे मातरम गाना शुरू किया। जेल अधिकारी हॉलिंग्स ने वंदे मातरम गाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। फिर भी रामचंद्र राव नामक कैदी वंदे मातरम गाता ही रहा। जेल अधिकारियों ने उसे 17 कोड़ों की सजा दी। उस समय भी रामचंद्र राव वंदे मातरम के नारे लगाते ही रहे। आखिर वार्डन ने ही यह पिटाई रुकवाई। खून से लथपथ रामचंद्र राव ने आधी बेहोशी की हालत में भी वंदे मातरम का उच्चारण बंद नहीं किया था। के दिसंबर में पंढरपुर में हुए हिंदू महासभा के अधिवेशन में स्वतंत्रता वीर सावरकर ने रामचंद्र राव को गौरवान्वित करते हुए उन्हें वंदे मातरम रामचंद्र राव की उपाधि देने की घोषणा की। आगे चलकर रामचंद्र राव वंदे मातरम रामचंद्र राव इसी नाम से पहचाने जाने लगे।
1: देश भर में घट रही घटनाओं के पृष्ठभूमि में आशा की किरणें राजनीतिक स्तर पर दिखने लगीं। इन सब का परिणाम आसपास की परिस्थिति पर खुद बंगाल में भी होता रहा। अप्रैल 1940 में कलकत्ता महानगर पालिका के वरिष्ठ सदस्यों के चुनाव में नगर पालिका प्रशासन में यूरोपीय प्रशासकों के एकाधिकार तोड़ने के लिए सुभाष चंद्र के भाई शरद चंद्र बोस ने मुस्लिम लीग से गठबंधन किया। नगरपालिका स्तर पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के आपसी विश्वास के आधार पर हुआ यह संपूर्ण देशभर में एकमात्र गठबंधन था।
0: दिसंबर 1940 में मुस्लिम लीग के एक मंत्री ए.के. फजलुल हक ने भी संयुक्त मोर्चे का प्रयास शुरू किया। जिस बंगाल में मुस्लिम लीग का पौधा उगा और फला फूला, उसी बंगाल में कुछ सकारात्मक प्रयास भी किए गए। हिंदू और मुस्लिम की संयुक्त सरकार कभी भी टिक नहीं पाएगी, इस तरह के अंग्रेजों के झूठे प्रचार को इन प्रयासों ने करारा जवाब दिया। सुभाष चंद्र के भाई और कांग्रेस के संसदीय दल के अध्यक्ष शरद चंद्र बोस, हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मोर्चा सरकार स्थापित करने का समर्थन किया। इस संयुक्त सरकार के मुख्यमंत्री फजलुल हक बने। विशेष बात यह है कि इस मोर्चा सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों के समय वंदे मातरम गीत गाने का कभी भी विरोध नहीं किया।
2: सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम।

सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की 44वीं कड़ी, मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और ममता सिंह, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्री हरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
0: ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। इस दौरान प्रतिनिधियों को अनुभव और विचारों के आदान प्रदान का भी अवसर मिलेगा। यह 3 दिवसीय मंच न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा का अवसर देगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली में युद्ध बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली के लोगों के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी दोस्ती ने भारत इटली रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों के लिए एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए करीबी सहयोग जारी रखने को लेकर उत्साहित हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnewshindi.com।

0: हम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1282 लोगों की मृत्यु हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। एक रिपोर्ट।
2: नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुआकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, थाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई है। काठमांडू के अस्पतालों में 2 और लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू कर दी गई है। इस बीच एक बचाव अभियान में त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना की सुरंग से 2 लोगों को जीवित बचाया गया। ये लोग फोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के बाद 10 दिनों से सुरंग में फंसे हुए थे। आपातकालीन दल ने अब तक 12,000 से अधिक लोगों को बचाया है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई थी। इससे उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बों और गाँवों में भारी तबाही हुई। समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
1: इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है। अभियान के दौरान 575 से अधिक प्राथमिकी भी दर्ज की गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार ये अभियान 12 जून से 31 अगस्त तक चलाया गया। आयोग ने राज्य सरकारों, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए काम किया, साथ ही बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यभर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सरदवत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के तहत अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू LPG और PNG उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू LPG सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए ₹3,000 सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।

0: भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: गुजरात में भी धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और संदेश से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन और संदेश

0: मानवता को सत्य, धर्म, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR हिंदी न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश से फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
1: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और करीब 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर सहित कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी, गुना, छतरपुर, सागर, दमोह और नर्मदापुरम सहित कई जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: बिहार में गंगा, पुनपुन, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।
2: बिहार में गंगा समेत 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना सुरक्षा दीवार के सभी 108 गेट बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ है। नालंदा के अस्थावा और पटना के धनरुआ में तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने पटना समेत 8 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान है। चीन के शेंजन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन से होगा। मैच भारतीय समयानुसार लगभग शाम 4 बजे शुरू होगा। सात्विक और चिराग ने कल फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव और क्रिस्टो पोपोव को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं पुरुष सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चेक यू से हार के साथ ही किदांबी श्रीकांत की चुनौती समाप्त हो गई। महिला सिंगल्स में भी भारत की चुनौती कल समाप्त हो गई। तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। वियतनाम में जारी पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने एंटीगुआ और बारबुडा, इजराइल और चेक गणराज्य को हराया। टूर्नामेंट 6 सितंबर तक चलेगा। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी शुरुआती रिपोर्ट जारी कर दी है। दिल्ली आ रही इस उड़ान को रास्ते में टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था, जिसमें कुछ यात्रियों को चोटें आई थीं। रिपोर्ट के अनुसार उड़ान के दोनों क्रू सदस्यों का साइको एक्टिव पदार्थों की जांच की गई। पायलट इन कमांड का प्रारंभिक नमूना नॉन नेगेटिव पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी और अन्य पहलुओं पर विस्तृत जांच चल रही है। एयर इंडिया ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों के किसी भी उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई भी की जाती है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज दोपहर में तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 526 अंक के उछाल से 76,680, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 64 अंक बढ़कर 23,938 पर कारोबार कर रहा था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए DNA प्रोफाइलिंग सेवा

0: उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है मदर इंडिया। गीत रचना शकील बदायूनी की और संगीत नौशाद साहब का।

शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों का गाया फिल्म मदर इंडिया का गीत अभी आपने सुना। ये स्वर है आशा भोसले और शमशाद बेगम की। फिल्म का नाम है नया दौर, शब्द साहिर लुधियानवी के और तर्ज ओपी नैयर की।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों की, 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम की ये है अगली पेशकश। SD बर्मन का संगीत है, साहिर लुधियानवी की बोल, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजी, फिल्म का नाम है प्यासा।

कार्यक्रम में आप सुनिए हजरत जयपुरी का लिखा गीत और वसंत देसाई का संगीत, स्वर लता मंगेशकर का है और फिल्म का नाम है जनक जनक पायल बाजी।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गनफॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावन बालोरिवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रविता जिंदाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से। मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म का नाम है 2 आंखें 12 हाथ। शब्दकार पंडित भरत व्यास है और संगीतकार वसंत देसाई है।

0: जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये है अगला गीत। फिल्म का नाम है बसंत बहार। गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और आशा भोसले, बोल शैलेंद्र के हैं और धुन शंकर जयकिशन की।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म सीआईडी से स्वर मोहम्मद रफी और गीता दत्त के, गीत रचना जानिसार अख्तर की और धुन ओपी।

0: इस दो गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: निकल जाओ इस घर से, तुम्हें कुष्ठ रोग है। अगर तुम इस घर में रही तो हम सबको भी कुष्ठ रोग हो जाएगा।
2: अरे भैया, आप भाभी को घर से क्यों निकाल रही हैं? इससे तो आपका परिवार टूट जाएगा। क्या आपको पता नहीं है कि कुष्ठ रोग अन्य बीमारियों की तरह ही है? इसका इलाज MDT से संभव है। भाभी को आज ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं और वहां उनका इलाज करवाएं।
3: स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स और हवन सामग्री।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों सहेलियों नमस्कार, हम आ गए आपका मनपसंद कार्यक्रम लेकर। हेलो सहेली, मैं हूँ आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक। इंतजार कर रही हूँ आपके फोन कॉल का। मेरा इंतजार हुआ खत्म, ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: हम मीतांशुरा बोल रहे हैं
0: जी। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: हम रहते तो हैं लखीमपुर खीरी में, लेकिन इस समय अपने भाई के यहाँ आए हैं, शाहजहान के पास में ही है।
0: भाई के यहाँ आए हैं, रक्षाबंधन मनाने आए हैं आप?
1: जी जी
0: जी। बताइए नीता जी, अपने बारे में बताइए।
1: हमारे 6 भाई हैं, तो भैया सभी भाई तो पहुँच नहीं सकते हमारे घर, इसलिए हम यहाँ पर आया था कि सारे भाइयों की राशि बन जाती है, रचना हो जाता है, इसलिए ज्यादातर हम ही आते हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छे हैं आपके जीवन में। अभी खुशियों के दिन आ रहे हैं, जब हम भाई के घर जाके रक्षाबंधन मना रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और आज आपका पहला फोन कॉल भी लग गया है, तो इसमें यानी सोने पे सुहागा हो गया है ना। अपने बारे में बताइए।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ
0: जी।
1: मेरे हस्बैंड है, मेरे ससुर है
0: जी,
1: और मेरी ननद है, उनकी शादी हो चुकी है। फिलहाल हम 3 लोग रहते हैं घर पे
0: जी। और बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनना चाहते हैं काजल फिल्म का गाना है, मेरे भैया मेरी संभा मेरे अम्मा।
0: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, बड़ौदा
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: से शारदा बेन नागरिका ने।
0: बड़ौदा से शारदा बेन बात कर रही है। बताइए शारदा बेन, आप क्या करती हैं?
1: बहुत सारी एक्टिविटी करती हूँ, गाना गाती हूँ, म्यूजिक का बहुत शौक है, रसोई का और एक्टिविटी में फ्लावर बनाती हूँ, तेज
0: अरे वाह,
1: पत्ते में से, पिस्ता में से, और जो
0: यानी
1: आचार के गुंदे आते हैं ना, गुंदा अथाना, वो भी ईसा वाला तोफान, लीला नारियल आता है ना, लीला नारियल ऊपर वाला ईसा,
0: जी
1: उसका फ्लावर बनाता है, उसमें कलर करते हैं।
0: वाह वाह वाह, यानी जो हम लोग जो इस्तेमाल करके जो बची हुई चीजें होती है जिसे हम फेंकते हैं, उन्हें आप फेंकती
1: हाँ,
0: नहीं है, उन चीजों से सुंदर सुंदर आप फ्लावर पॉट बनाती हैं, फूल बनाती हैं, है ना?
1: और हर साल मैडम राखी आती है, राखी के सब सामान में रख देती हूँ, इसका भी मैं इस्तेमाल करती हूँ।
0: क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी आदत है आपकी कि जिन चीजों से हम कुछ और भी क्रिएटिव कर सकते हैं वो आप कर रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और
1: गाना गाना भजन कीर्तन सब आता है मैडम।
0: जी, तो कुछ गाकर सुनाइए।
1: खमार खमार मारू अलंगा जे श्याम, आवी में नारी नटू की फोड़े अरे रे श्याम, आवी में नारी नटू की फोड़े। खमार खमार मारू अलंगा जे श्याम, आवी में नारी नटू की फोड़े। गायो चरवी वालन तीनू मना से श्याम, आवी में नारी नटू की फोड़े। गोपियों नगर माटी में लीलायो करे श्याम, आवी में नारी नटू की फोड़े।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर आपकी आवाज है और इतनी सुर में आप गाती हैं, तो ऐसे ही गाते गुनगुनाते रहिए और आप जो क्रिएटिव काम करती है ना वो भी करती रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है,
0: बहुत सुंदर गाना आपने चुना है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से बोल रही हूँ, शहनाज अख्तर।
0: शहनाज जी नमस्ते, क्या हाल चाल है?
1: बस बहुत बढ़िया है।
0: और बताइए आप क्या करती हैं?
1: होम गृहिणी हूँ, घर पर ही रहती हूँ
0: जी।
1: तीन बच्चे हैं मेरे, दो बेटी है एक बेटा है।
0: अच्छा तो ये बताइए कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, तो हर साल हम 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाते हैं, तो पोषण को लेकर आपके जीवन में क्या महत्व है, यानी कि आप बच्चों को पोषक भोजन किस तरह से देती है जरा बताइए ना।
1: बच्चों को सुबह में जैसे हलवा नाश्ते में जूस वगैरह।
0: ये आप बहुत अच्छी बात बताई आपने।
1: पोषण को लेकर मैं ये कहना चाहती हूँ मैडम कि पोषण हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि जिंदगी में जान है तो जहान है, तो हम अपने स्वास्थ्य का हम खुद ही ध्यान रख सकते हैं।
0: बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं आज?
1: मैं मैडम अगर जिंदगी हो तेरे संग हम, आज तो मैं अपने हस्बैंड के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ।
0: क्या बात है, अपने पति के लिए ये गाना समर्पित है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं, कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी मैं रंजना कुमारी, बिहार शरीफ मगरा, मेरा गांव का नाम हुआ। जी मैं नालंदा जिला से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, बताइए रंजना जी आप क्या करती हैं?
1: जी मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: जी ऐसा होता है ना कि सावन भादो का महीना जैसे ही आता है तो हमारे जीवन में उमंग और उत्साह के दिन आने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे त्योहार होते हैं, त्योहारों में बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं। तो आप कौन सी मिठाइयाँ बनाती हैं?
1: जी हम लोग यहाँ ये घर में ही ठकुरारी बना हुआ, कृष्ण भगवान का ये मंदिर बना हुआ है घर में
0: जी,
1: तो उसमें हम लोग का 56 भोग लगता है। उसमें से कुछ बाहर से मिठाइयाँ आती है दुकान से, कुछ घर में भी जैसे हलवा वगैरह होता है, मूंग का हलवा, उड़द का हलवा, वही लगता है भगवान में भोग में जन्माष्टमी के दिन में। तो उस दिन भी हम लोग क्या बहुत उत्साह होगा, पूरे घर सब मिल के जन्माष्टमी मनाते हैं हम लोग।
0: तो आजकल ऐसे हो रहा है कि लोग अपनी स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो रहे हैं, चीनी का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ करती हैं कि चीनी के बजाय उसमें गुड़ का इस्तेमाल करना है?
1: जी जी हम लोग हलवा में तो गुड़ ही पड़ता है। चीनी कम, गुड़, और ये हम लोग मीठा बोलते हैं, गुड़ से पहले मीठा बनता है।
0: जी
1: जी जो गन्ने का रस जो निकलता है ना, तो पहले मीठा बनता है, उसके बाद गुड़ बनता है। तो वो जो मीठा है वो ज्यादा यूज करते हैं हम लोग मीठा।
0: जी तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इन्हें अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक है और पूरे परिवार का ध्यान रख रही है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी छोटी बहू फिल्म का गाना है कन्हैया तू किसको कहेगा मैया।
0: जी सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, बताइए
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं रुचि भट्ट बोल रही हूँ, इंदौर से, मध्य प्रदेश से।
0: जी रुचि जी, नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: बताइए अपने बारे में बताइए।
1: मैं इंदौर से रहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। और मैं पहले बिजनेस में हुआ करती थी, मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइम बिजनेस में, और अभी कुछ सालों से लाइफ एंजॉय कर रही हूँ।
0: जी, यानी जिंदगी का लुत्फ उठा रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी देखिए, इंदौर की जब भी बात चलती है तो खान पान आंखों के सामने आ जाता है, तो किस तरह के खाने आप एंजॉय करती हैं या बनाती हैं घर में?
1: इंदौर के पानी में ही स्वाद है ऐसा कहा जाता है, और मुझे भी, जैसे मैं रह रही हूँ और यहाँ के खाने का लुत्फ उठा रही हूँ, तो वाकई स्वाद है। और चाहे वो आप चाट पकौड़ी ले लें या किसी भी किस्म का स्वाद आप लें, चाहे आप सदर में भुट्टे का किस खाने चले जाएं, या हर तरीके के खान पान में स्वाद है।
0: जी, और अभी यानी हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मना रहे हैं 1 से 7 सितंबर तक, तो पोषण को आप
1: जी,
0: कितना महत्व देती हैं?
1: मेरी समझ से पोषण, मेरे जैसे शरीर के लिए पोषण का काम जो खान पान से मिलता है, उसको मैं चाहूंगी कि मैं इंदौर के खान पान से जोड़ूं। यहाँ पे जैसा कि आपने पूछा कि चलन क्या है खाने का, तो अभी चलन भी बदल रहा है, मिलेट्स को ज्यादा शामिल किया जा रहा है, चाहे वो चाट पकौड़ी हो या किसी भी टाइप की रेसिपीज हो उसमें, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस है यहाँ के लोग, इसलिए उस चीज के ऊपर भी फोकस बढ़ रहा है और लोगों का खानपान भी बदल रहा है उसी के हिसाब से।
0: जी, मिलेट्स को बहुत महत्व देना चाहिए। ये जैसे ज्वार का आटा है, फिर बाजरा है, फिर यानी मैदे को हमें अवॉइड करना है और मिलेट्स को महत्व देना है। साथ ही इंदौर की एक और खासियत है स्वच्छता, साफ सफाई। तो ये क्या संदेश आप लोगों को देना चाहेंगी साफ सफाई को लेकर?
1: मेरी तरफ से एक ही, अगर घर से शुरुआत करेंगे, गीला कचरा, सूखा कचरा और की शुरुआत से आदत डालेंगे, तो हर घर और हर शहर इंदौर जैसा ही स्वच्छ बन सकता है, और हम कर सकते हैं। शुरुआत हमें घर से ही करनी है।
0: ये बात आपने बहुत सही कही, और घर से तो हम लोग शुरुआत करते हैं, पर सार्वजनिक स्थल पर जाकर हम थोड़े से ना लापरवाह हो जाते हैं, इधर उधर चीजें फेंकने लगते हैं।
1: जब हम सार्वजनिक स्तर पर बात करते हैं तो वहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन होना ज्यादा जरूरी लगता है मुझे। और सेल्फ डिसिप्लिन एक माँ, एक लेडी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो खुद सेल्फ डिसिप्लिन रहेगी तो उसकी फैमिली भी सेल्फ डिसिप्लिन रहेगी, और एक एक अच्छा सोसाइटी और एक अच्छा साफ सुथरा शहर हम हर जगह, हर पूरे देश में बना सकते हैं।
0: जी, यानी कि बच्चों के संग जब हम बाहर जाते हैं तो बच्चों को इस तरह की आदत लगाएं कि बस चॉकलेट खाया के रैपर नहीं फेंकना है, उसे हमें डस्टबिन में ही डालना है। तो बच्चे अगर बचपन से इन आदतों को अपनाते हैं तो बड़े होके एक बहुत अच्छे नागरिक बन सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने।
0: जी बताइए रुचि जी, आज कौन सा गीत

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में वक्त हो चुका है ब्रेक का।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
2: हेलो सहेली, नमस्ते।
1: नमस्ते, बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
2: मैं सुचित्रा पंडित हूँ, उज्जैन से बात कर रही हूँ, उज्जैन मध्य प्रदेश।
1: जी सुचित्रा जी, बताइए क्या करती हैं?
2: मैं संगीत की कक्षाएं भी लेती हूँ, जॉब भी किया हुआ है, अभी मेरी उम्र 69 है और बचपन से ही विविध भारती सुन रहे हैं।
1: क्या बात है,
2: मेरे यहाँ रोज दिन भर रेडियो चलता रहता है।
1: क्या बात है, और आपने जैसे बताया कि आपकी उम्र 69 साल की है, पर आपकी आवाज से ऐसा लगता है कि कोई 20-25 साल की युवती हमसे बात कर रही है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए मैडम।
1: और आपने कहा है कि आप संगीत की शिक्षा देती हैं, तो कुछ सुनाइए आप।
2: तेरा जाना दिल के अरमानों का।

0: बनके तकदीरों का मिट जाना तेरा जाना।
1: बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत
2: सडनली तो याद आ गया, वो गा दिया मैडम कोई पहले से तैयारी नहीं थी
1: नहीं नहीं बहुत सुंदर आपकी
2: जी
1: आवाज भी है और बहुत सुर में गाती हैं आप। और जैसे
2: जी
1: आपने कहा कि आप संगीत की शिक्षा देती हैं,
2: जी
1: तो
2: जी
1: किस उम्र के बच्चे आपसे शिक्षा लेते हैं? इन्हें कुछ
2: मैं प्रायः जो दूसरी पास हो ऐसे बच्चों से शुरू करती हूँ, ताकि वो थोड़ा कम, जिनको अक्षर ज्ञान हो तब से शुरू करती हूँ। अक्षर बचपन से ऐसा लगता है लोगों को कि छोटेपन से एकदम से बहुत बड़े कुछ गायक बन जाए, वो संभव नहीं है। धीरे धीरे ये सारी चीजें बच्चों में आती हैं। पहले उनका अपने को रुचि किस चीज में है ये देखना बहुत जरूरी रहता है। आजकल क्या हो गया, ये रियलिटी शोज के कारण ना हर पेरेंट को लगता है कि हमारा बच्चा एकदम स्टेज पे जाके और गाने लगे। कुछ चीजें तो जैसे बोलते ना इनहेरेंट होती है, आपके अंदर वो ताल और सुर होना चाहिए तभी वो उभर के बाहर आ सकता है।
1: और आप रियाज के माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से बच्चों को तराशते हैं।
2: जी जी जी,
1: ये आपने बहुत सही बात कही है, ये एक संदेश है। और संगीत को लेकर आप छोटे बच्चों को या पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगी?
2: हाँ, यही देना चाहूंगी मैं कि पहले ना उनकी रुचि किस चीज में है वो देखिए पहले आप। जबरदस्ती अगर किसी को ड्राइंग में रुचि है तो उसे ड्राइंग करवाइए, उसे अगर किसी संगीत में रुचि है तो कराइए, या उसे स्पोर्ट्स में कोई रुचि है तो वो स्पोर्ट्स उसे करवाना चाहिए। मतलब आपकी इच्छा है कि वो अच्छा गायक बन जाए तो वो संभव नहीं है, उसमें वो चीज अंदर होनी भी चाहिए ना, ईश्वर प्रदत्त भी कुछ चीजें होती है।
1: पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इच्छाएं बच्चों पर लादना नहीं चाहिए।
2: हाँ, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है तभी बच्चा आगे जाकर के कुछ कर सकता है। तो दौड़ में हम ना दौड़े, वास्तव में अगर कलाकार बनाना है तो उसके साथ धैर्य, साधना, ईश्वर कृपा, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है ऐसा मुझे लगता है।
1: जी बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
2: बंदिनी का अब के बरस भेजो भैया को बाबुल, अभी सावन भी है
1: जी,
2: और बहुत ही प्यारा आशा जी ने बहुत अच्छा गाया है वो गीत, तो बहुत मेरे दिल के करीब है वो गाना
1: जी। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: आलिया भानो बात कर रही हूँ, वडोदरा गुजरात से।
0: जी आलिया जी, बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैडम मैं ब्लाइंड हूँ, घर पे ही रहती हूँ। आप सोनाली पाठक बोल रही है ना?
0: जी हाँ, मैं सोनाली बात कर रही हूँ।
1: मुझे आपसे बात करने का बहुत अच्छा लगा, बहुत
0: जी हाँ
1: खुशी हो रही है।
0: जी, हमें भी बहुत खुशी हो रही है, आपका फोन लग गया है। और चलिए बताइए, अपनी रुचियां क्या हैं आपकी, कौन से शौक हैं आपके?
1: मुझे रेडियो सुनने का बहुत अच्छा लगता है, गाने
0: रेडियो
1: सुनने का।
0: जी
1: और मुझे ना सितारे के सितारे, आज के मेहमान, ये सब इंटरव्यू वाला प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: एक रिश्ता उनका गाना सुनना चाहती हूँ। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला, एक दिल ही तो है। और दीदी, मुझे पूजा दीदी की आवाज बहुत अच्छी लगती है, और
0: जी
1: सलमा दीदी की आवाज भी।
0: जी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली मैम।
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: साइबर रानी ने फोन लगाया मैम।
0: जी साइबर रानी, कहाँ से फोन लगाया है आपने?
1: सहारनपुर से फोन लगाया।
0: जी साइबर रानी जी, अपने बारे में बताइए।
1: जी मैम, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ।
0: क्या पढ़ रही हैं आप?
1: बीए कर रही हूँ।
0: तो आपके कुछ भविष्य के कुछ प्लान्स है कि बीए के बाद में क्या करना चाहती है?
1: अपने खुद के लिए टीचर बनना सोचती हूँ।
0: टीचर बनना चाहती है?
1: जी मैम।
0: जी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए हर किसी का सपना होता है और आपका सपना है टीचर बनना। तो आप यानी टीचर क्यों बनना चाहती है, इसके पीछे भी कोई कारण होगा?
1: जी मैम, मेरे को अच्छा लगता है।
0: जी हाँ, देखिए आप टीचर बनना चाहती हैं तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी आप इस कॉल के माध्यम से?
1: बच्चों का मैं कहना चाहूंगी जिसके भी बच्चे हैं अपने बच्चे को अच्छी तरह पढ़ाइए, आगे आने वाले भविष्य में उनकी जिंदगी अच्छी बने।
0: जी तो चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: किसकी फिल्म मूवी का पहली पहली बार मोहब्बत की है।
0: जी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: उज्जैन से अनिता जोशी ने।
0: अनिता जी, क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया, महाकाल का आवाज कृपा है
0: जी। बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ
0: जी। और आज जन्माष्टमी का त्योहार है, तो आप जन्माष्टमी का त्योहार कैसे मनाती हैं?
1: हम कान्हा जी का अभिषेक करते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं, झूला झुलाते हैं, उनको माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं
0: जी। अच्छा, अपने शहर के बारे में बताइए
1: जी। हमारे शहर में कृष्ण भगवान, उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी, यहाँ पे सांदीपनी आश्रम है उनका
0: जी।
1: महाकाल का मंदिर भी है, 12 ज्योतिर्लिंग माता है वो।
0: बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: संजोग फिल्म का, यशोदा का नंदलाला
0: जी। संजोग फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सुहाना बानो बात कर रही, गुजरात अहमदाबाद से। बेटा
0: जी बताइए, आप क्या करती हैं?
1: मैं घर भी रहना पसंद करती हूँ, थोड़ा बहुत कभी टाइम मिला है तो सिलाई विलाई कर लेती हूँ। कपड़ों में कपड़े में सिलती हूँ मैडम,
0: जी, यानी सिलाई करने का आपको शौक है।
1: मुझे आपके कार्यक्रम भी सुनना बहुत पसंद है
0: कौन से कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: मैडम। मुझे हिंदो फरमाइश आता है, वो भी बहुत पसंद है, और आज के कंसारो बम्बे टोकी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैडम हमको दीवाना कर गए का डाइवर्सन
0: जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: सखियों, आपसे की गई बातें, आपके अनुभव दिल को छू गए। आज हमसे जुड़ने वाली सभी सखियों को धन्यवाद। और वे सखियां जिनकी कॉल नहीं लग पाई, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, अगली बार जरूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहली बार में ही आपकी कॉल कनेक्ट हो जाए। साथ ही जिन सखियों ने आज हमसे बात की, उनसे ये करबद्ध अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिल सके। और हमारे पुरुष श्रोताओं से अनुरोध है कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वे कॉल ना करें, क्योंकि इससे लाइन व्यस्त हो जाती है और हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों, आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले प्रोग्राम में। हमारी सखियों को बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर इस तरह से हैं, 400-24662 यानी 400-24662। दूसरा नंबर है 2867-0288 यानी 2867-0288। और मुंबई का STD कोड है 022 यानी 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है किरण बंग, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं। दीजिए आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे साहित्य जगत में रश्मि रविजा के नाम से प्रसिद्ध लेखिका रश्मि वर्मा की कहानी आखिर कब तक।
2: घर में सबसे छोटी थी, तितली की तरह सबके आसपास मंडराती रहती, चिड़िया की तरह फुदक कर कभी घर के अंदर आती तो कभी बाहर। घर वालों की ही नहीं पड़ोसियों की भी बड़ी प्यारी थी। उसके कॉलेज से घर आते ही शर्मा चाची अक्सर कभी गरम हलवे कभी गरम पोहे की प्लेट भेज देती। जब स्नेहा पूछती, आपको कैसे पता चल जाता है मैं घर आ गई? अरे तेरे पंचम सुर के आलाप से पता चल जाता है, जितनी देर घर में तू होती है तेरे गाने की मीठी आवाज आती रहती है। कहीं मेढक भी ना आ जाए कि ये मेरी मेढकी कहाँ गा रही है। ये उससे 2 साल बड़े भाई की आवाज थी। भैया कहकर स्नेहा झपटी तो भैया के हाथों में उसकी चोटी आ गई। बोल और झपटेगी कटखनी बिल्ली कहीं की? वह उसकी चोटी थोड़ी और खींचता और वो चिल्ला पड़ती, माँ। माँ की आवाज सुनते ही भैया चोटी छोड़ किताब में आंखें गड़ा लेता। शर्मा चाची के बच्चे बड़े थे और नौकरी पर दूसरे शहर चले गए थे। उन्हें उन सब की ये शरारत बड़ी भली लगती। माँ दोनों को डांटती तो शर्मा चाची उन्हें समझाती, जाने दो शिवानी की माँ रौनक बनी रहती है, एक दिन मेरे जैसे तरसोगी कि लड़ने को ही सही बच्चे पास तो होते। स्नेहा भैया को जीप चढ़ाकर भाग जाती तो भैया फिर से किताबें फेंक उसके पीछे भागता। माँ सर पर हाथ रख लेती, ओह कोई किसी से कम नहीं। भैया हमेशा चढ़ाता खिजाता रहता, पर स्नेहा को कॉलेज के लिए देर होती तो बाइक से झट कॉलेज छोड़ाता। रात में उसके साथ बैठकर उसे मैथ समझाता। अगर भैया की पेन उसके हाथों गुम हो गई तो पापा जी से शिकायत कर देता। पापा की यूं तो वो सबसे लाडली थी, पर न्याय करने के लिए पापा उसे झूठ मूठ का भी डांट देते तो भैया को ही बुरा लग जाता, फिर उसके लिए चॉकलेट जरूर लेकर आता।

जैसे उसकी फ्रेंड फिलोसफर गाइड ही थी। बचपन से ही स्नेहा की किताबों पर कवर लगा देना, उसकी किताबों की रैक ठीक कर देना, अपने दुपट्टे से उसकी गुड़िया की सुंदर साड़ी बना देना, होमवर्क में मदद करना, उसकी शैतानियों को हमेशा छुपाना। दीदी ये सारा कुछ उसके लिए करती। सहेली से लड़ाई हो जाए तो आंसू भी दीदी ही पोंछती। बुआ जब भी यहाँ आती माँ को समझाती, सुनीता इसे भी कुछ रसोई का काम सिखाओ, कल को पराए घर जाएगी, क्या कहेंगे सब कि घर वाले ने कुछ सिखाया ही नहीं है, खानदान का नाम कटवा देगी लड़की। माँ बुआ की बात रखने को उसे किचन में भेज देती और दीदी को आवाज लगाते, शिवानी आज सारा काम गुड़िया से ही करवाना। उसका अच्छा भला नाम था स्नेहा, पर सब गुड़िया ही कहते। जब दोस्त उसे चढ़ाते तो उसे बहुत गुस्सा आता, पर घर वालों को कौन समझाए, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को भी कोई गुड़िया बुलाता है। वो किचन में जाती तो जरूर, पर दरवाजे की ओट में नॉवल पढ़ती रहती और दीदी भी मुस्कुराकर कुछ नहीं कहती, बल्कि माँ की आहट सुनते ही उसे आगाह कर देती और स्नेहा झूठ मूठ बर्तन उठाने रखने लगती। माँ को कुछ दाल में काला नजर आता, वो स्नेहा को अविश्वास से देखती तो स्नेहा पलट कर पूछती, क्या हुआ, तुमने कहा ना किचन में काम करने को, तो कर रही हूँ, कल मैथ्स का क्लास टेस्ट है, प्रैक्टिस करनी है, पर जाने दो, कम नंबर आए तो क्या, किचन का काम सीखना ज्यादा जरूरी है ना, आखिर खानदान की नाक का सवाल है। माँ कहती, अच्छा बाबा जा, बहुत काम कर लिया, जा तू पढ़, शिवानी तू भी जा, अब किचन मैं देखती हूँ। स्नेहा चुपके से नॉवल उठा दीदी की तरफ एक मुस्कुराहट फेंक भाग जाती। दीदी की शादी हो गई तो जैसे स्नेहा पर प्यार न्योछावर करने वाले एक और जन की बढ़ोतरी हो गई। जीजा जी की कोई छोटी बहन नहीं थी, वे अपनी छोटी बहन का सारा शौक उसके जरिए ही पूरी करते। अब कॉलेज में सहेलियां उसका नया बैग, नई सैंडल, नई ड्रेस सब हैरानी से देखती और वो इतरा कर कहती, मेरे जीजा जी लाए हैं बंबई से।

एमए के फाइनल ईयर ही में थी कि बुआ एक रिश्ता ले आई। बड़े अच्छे लोग हैं, लड़का अफसर है, ज्यादा मांग नहीं उनकी, बस देखे भाले घर की लड़की चाहते हैं। मुझसे बरसों का परिचय है। मैंने गुड़िया की बात चलाई तो झट मान गए। पिताजी को लगता था अभी बहुत छोटी है, भैया उसे और आगे पढ़ने देने किसी नौकरी के बाद ही शादी के पक्ष में था। पर बुआ पिताजी से बड़ी थी, माँ की तरह उन्हें पाला था, पिताजी की एक न चली उनके सामने। दीदी की तो शादी होते ही मानो उसके लिए यह घर पराया हो गया। यहाँ के मामलों में वह मुंह नहीं खोलती। नेहा ने जब थोड़ा डरते हुए दीदी को फोन किया, दीदी वहां सबसे बड़ी हो जाऊंगी मैं, कैसे संभालूंगी सब? संभालना क्या है, कोई छोटे बच्चे थोड़े ही है वे सब। अच्छा साथ रहेगा, खुश रहेगी तू। यहाँ पर मुंबई में देख, तेरे जीजा जी ऑफिस चले जाते हैं तो सारा दिन मैं अकेले पड़ी रहती हूँ, खाना तक खाने का मन नहीं होता। ज्वाइंट फैमिली में समय अच्छा कट जाता है। फिर दीदी अपने ही अकेलेपन का रोना रोने लगती। दीदी के समझाने पर उसके मन का डर भी जाता रहा। कहीं ये भी लग रहा था क्या रौब होगा, बड़ी भाभी बनेगी वह, यहाँ तो सबसे छोटा समझ सब बस लाड प्यार ही लुटाते हैं, कोई गंभीरता से लेता ही नहीं। पर ससुराल वालों की गंभीरता का अंदाजा उसे एंगेजमेंट से ही होने लगा। पास में बैठे अजनबी ने जैसे बस एक उचटती सी नजर डाली उस पर, वरना कई कजिन्स को देख चुकी थी, लड़के जैसे बात करने के बहाने ही ढूंढते रहते। शादी की रस्मों में भी होने वाले पति को गंभीर मुख मुद्रा में ही देखा, सहेलियों को ज्यादा मजाक करने की हिम्मत भी नहीं हुई।

ने समझाया था, ससुराल में जल्दी से उठकर सबके लिए चाय बना देना, यहाँ की तरह 8 बजे तक मत सोती रहना। नेहा को भी दिखाना था, वह अपने घर की छोटी लाडली है तो क्या, जिम्मेवारियां संभालना उसे खूब आता है। सुबह ही उठ नहा धो किचन में पहुंच गई, चाय बनाकर ट्रे लेकर निकल ही रही थी कि सासू माँ ने टोक दिया, बहू पल्ला रखो सर पर। अब थोड़ी देर वो इसी में उलझी रही, माथे पर पल्लू रख जैसे ही ट्रे थामे पल्लू गिर जाए, फिर से पल्लू संभाले। सासू माँ गौर से यह सब देखती रही पर कहा नहीं कि रहने दो। आखिरकार उसने पल्लू ठुड्डी से दबाया और किसी तरह आगे बढ़ी तो लगे कि साड़ी अभी पांव में उलझ जाएगी और वो गिर जाएगी। बड़ी मुश्किल से मैनेज किया, ससुर जी के सामने ट्रे रखी, सोचा ससुर जी खुश हो जाएंगे और 2 घड़ी पास बिठा बातें करेंगे। पर उन्होंने अखबार उठाकर एक बार देखा और फिर अखबार में नजरें गड़ा ली। जब स्नेहा ने बड़ी नम्रता से पूछा, चीनी कितनी चम्मच, सपाट स्वर में उत्तर मिला, 1 चम्मच। स्नेहा निराश सी बाहर चली आई, फिर भी उसने कोशिश नहीं छोड़ी, खाने के समय पास खड़ी रहती, पूछती रहती, और सब्जी दूं, रायता दूं, कोई ना कोई बात शुरू कर देती। आज गर्मी बहुत है, आपको ऑफिस से आते वक्त ज्यादा ट्रैफिक तो नहीं मिला? एक दिन ससुर जी ने रूखे स्वर में कह दिया, कुछ चाहिए तो कह दूंगा। स्नेहा का मन बुझ गया, शायद ससुर जी को अपने रूटीन में बदलाव पसंद न था, वे घर में किसी से भी बहुत कम बातें किया करते थे। ससुर जी की आदत उनके बड़े बेटे को भी थी, घर में सिर्फ खाने कपड़े से ही मतलब था। दोनों बाप बेटे टीवी पर समाचार देखते और जैसे ही सासू जी के सीरियल देखने का वक्त होता, दोनों उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते। वह असमंजस में पड़ जाती, पति के साथ कमरे में बैठे या सासू माँ के साथ सीरियल देखे। पति तो अपने लैपटॉप पर दफ्तर का कोई काम लिए बैठे होते। वह कमरे, ड्राइंग रूम और किचन का चक्कर लगाती रहती।

शादी से पहले इतनी खुश थी स्नेहा। हम उम्र देवर और ननद हैं, उसने सोचा था बढ़िया वक्त कटेगा, ननद की कोई बहन नहीं, वो सारा प्यार उड़ेल देगी। पर ननद कॉलेज से सीधी अपने कमरे में जाती और मोबाइल से चिपक जाती। एक आध बार स्नेहा ने कमरे में जाकर बात करने की कोशिश भी की तो ननद ने बड़े अनमने भाव से उत्तर दिया और वो पलटकर दरवाजे तक भी नहीं पहुंची थी कि ननद पीठ फेरे किसी को फोन पर कह रही थी, अरे भाभी थी कॉलेज से आओ नहीं कि बहाने से आ जाती हैं कमरे में, इत्मीनान से फोन पर बात भी ना कर सको। स्नेहा ने ननद से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश छोड़ ही दी। उसे लगा था देवर हमेशा भाभियों के प्यारे होते हैं। एक दिन देवर अपने दोस्त के साथ सिनेमा देखने गए थे। सास और पति के मना करने के बावजूद वो उसका इंतजार करती रही, ड्राइंग रूम में चैनल बदल कर समय काटती रही। देवर ने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और उसे ड्राइंग रूम में देख एक मिनट के लिए हेडफोन निकाला और पूछा, अरे भाभी नींद नहीं आ रही आपको या भैया से लड़ाई हो गई है? हाँ। और फिर कान में हेडफोन लगाए गाने पर झूमते सर हिलाता अपने कमरे में चला गया। स्नेहा ने ही कमरे के दरवाजे पर जाकर पूछा, खाना गर्म करती हूँ, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए। ओह क्या भाभी, आप कितनी ओल्ड फैशन है, मुझे खाना होगा तो माइक्रोवेव में गर्म कर लूंगा, वैसे अक्सर मैं खाना खाकर ही आता हूँ। गुड नाइट भाभी एंड थैंक्स फॉर आस्किंग, कहकर वापस हेडफोन लगा झूमना शुरू कर दिया। इस घर का रंग ढंग ही निराला था, सब एक छत के नीचे

रहते थे पर सबकी दुनिया अलग थी। स्नेहा सबकी दुनिया में कदम रखने की कोशिश करती पर दरवाजा बंद पाती और फिर बंद दरवाजे से टकरा बार बार उसका मन लहूलुहान हो जाता। स्नेहा के पति को घूमने फिरने का कोई शौक नहीं था, उनका देखा जाना अपना शहर था, उन्हें कहीं भी जाने का कोई उत्साह नहीं रहता। शुरू शुरू में स्नेहा ही जिद कर बाहर जाने पर मजबूर करती। पति बड़े बेमन से गंभीर चेहरा बनाए साथ हो लेते पर हर जगह कोई ना कोई परिचित मिल जाता और फिर तो पति की मुखमुद्रा बिल्कुल बदल जाती। इतने गर्मजोशी से मिलते और बातों का वो सिलसिला शुरू होता कि स्नेहा की उपस्थिति ही भूल जाते। वो उपेक्षित सा महसूस करती, स्नेहा को गुस्सा भी आता। इन सब से कैसे इतना घुल मिलकर बातें कर रहे हैं, उससे बातें करते जुबान पर ताले पड़ जाते हैं। धीरे धीरे बाहर घूमने जाने का उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया।

बस एक सहारा दीदी और सहेलियों के फोन का रहता। फोन पर बात करते वो अपने आसपास का पूरा परिवेश भूल जाती। लगता वही कॉलेज का लॉन है या फिर घर की छत। ऐसे ही एक रविवार की सुबह देर तक बातें की थी दीदी से। दीदी ने उन्हें मुंबई बुलाया था और पतिदेव ने भी हामी भर दी थी। स्नेहा का मन इतना खुश

खुश था कि बाथरूम में देर तक गुनगुनाते हुए नहाती रही। बाहर निकली तब भी गीले बालों को झटकते गाना जारी रहा। कुछ देर बाद जब लंबे बाल पीछे की तरफ फेंक सामने देखा तो पाया दरवाजे पर खड़े पति उसे गौर से देख रहे थे। एक सल्लज मुस्कान फैल गई उसके चेहरे पर। ये ध्यान भी आया यहाँ आकर तो वह गाना ही भूल गई है। पति ने पहली बार उसका गाना सुना है। शायद अभी आकर बाहों में भर लेंगे और कहेंगे कितनी मीठी आवाज है तुम्हारी, हरदम क्यों नहीं गाती। इंतजार में जैसे उसकी सांसें भी रुक गई थी पर कोई आहट नहीं हुई। नजरें उठाकर देखा तो पति अखबार उठा कुर्सी की तरफ जा रहे थे। उसे अपनी तरफ देखता पाकर बोले, इतनी जोर से गा रही हो, बगल के कमरे में ही माँ पापा हैं, कुछ तो सोचा करो। और अखबार फैला लिया सामने। स्नेहा का मन हुआ वो भी पैर पटकती हुई बाहर चली जाए, पर फिर सोचा आज इतवार है और दिन बस शुरू ही हुआ है, सारा दिन अबोला रह जाएगा। किसी तरह आंसू जज्ब करते हुए स्वर को सामान्य बनाते हुए पूछा, दीदी ने बुलाया है, आपने भी हाँ कहा है, कब चलेंगे मुंबई? छुट्टी कहाँ है, इतना काम है दफ्तर में, कैसे जा सकता हूँ? अब वो हाँ तो कहना ही पड़ता है ना, बाद में कोई बहाना बना देंगे। और ये कहते हुए अखबार में डूब गए। स्नेहा जैसे आसमान से गिरी। कितनी खुश थी वह, कितनी सारी योजनाएं बना डाली, अब अपने आंसू रोकना मुश्किल हो गया। किचन में जाकर ढेर सारे प्याज काट डाले। सास ने आश्चर्य से पूछा, इतने सारे प्याज? आंखें नाक पोंछते हुए इतना ही कहा, हाँ आज सोचा आलू दो प्याजा बना दूं।

उसने तय कर लिया, अगर घर वालों की अपनी दुनिया है तो वो भी अपनी अलग दुनिया बसा लेगी और खुश रहेगी उसमें। और खाली वक्त में अखबारों के कॉलम देखने लगी, या तो नौकरी करेगी या फिर कोई बढ़िया सा कोर्स। अभी यह तलाश जारी ही थी कि उसे माँ बनने की खुशखबरी मिली। लगा अब घर का माहौल बदल जाएगा। नन्हे बेटे की किलकारी ने घर में रौनक तो ला दी, पर स्नेहा की दिनचर्या में ज्यादा बदलाव नहीं आया, बल्कि नई जिम्मेवारियां और शुमार हो गईं। बेटे को तो सब खूब खिलाते, सारा दिन घर का कोई न कोई सदस्य बेटे को गोद में उठाए फिरता, पर काम सारा स्नेहा के जिम्मे था। स्नेहा जरा इसके कपड़े बदल दो, दूध का टाइम हो गया है, दूध पिला दो, लगता है नींद आ रही है, सुला दो। वो नींद में ही उसके पास आता। कभी कभी स्नेहा को लगने लगता कहीं बड़ा होकर ये ना सोचे माँ सिर्फ काम के लिए ही होती है और बाकी सब लोग साथ खेलने को। मितभाषी पति भी बेटे के साथ खूब खेलते। एक दिन प्रैम खरीद कर ले आए, वो बहुत खुश हुई। अब प्रैम में बेटे को लेटा, दोनों पति पत्नी पार्क में उसे घुमाने के लिए ले जाया करेंगे। लेकिन दूसरे दिन ही पति ने ऑफिस से आते ही जल्दी से कपड़े बदले और बोले, इसे तैयार कर दो, जरा मैं घुमा कर ले आता हूँ। वो मन महसूस कर रह गई, हाँ उसे तो किचन देखना है, वो कैसे जा सकती है। जब देवर की भी शादी तय हो गई तो सबसे ज्यादा खुशी स्नेहा को ही। अब उसे एक सहेली मिल जाएगी, वो भी तो दूसरे घर से आएगी, यहाँ के तौर तरीके से अनभिज्ञ। तय कर लिया स्नेहा ने, उसे वो कभी अकेलापन नहीं महसूस होने देगी। पर स्नेहा ने पाया देवरानी ने तो इस घर में घुलने मिलने की कोई कोशिश ही नहीं की। पहले दिन ही इतनी देर तक सोती रही कि सासू जी को उसे जगाने के लिए ननद को भेजना पड़ा। और जब देवरानी से नहा धोकर नाश्ते के लिए बाहर आने के लिए कहा गया तो उसने कह दिया, अभी तो तैयार होने में बहुत समय लगेगा, दोनों जन का नाश्ता कमरे में ही भिजवा दी जाए। ननद पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। मेरे हाथों नाश्ता भिजवाने की तो सोचना भी मत। सासू जी ने असहाय हो स्नेहा की तरफ देखा तो वो भागकर कामवाली को बुला लाई। शुक्र है स्नेहा ने उसे अतिरिक्त पैसे का वायदा कर दिन भर के लिए रोक लिया था, वरना स्नेहा को ही देवर देवरानी की सेवा में हाजिर होना पड़ता। देवरानी ने बाद में भी कभी जल्दी उठने की कोशिश नहीं की, बल्कि स्नेहा से ही कहती, आप कैसे इतनी जल्दी उठ जाती हैं, मेरी तो आंख ही नहीं खुलती। क्या बताए स्नेहा, मायके में वो भी तो देर तक सोया करती थी। देवर के ऑफिस जाने के बाद ही देवरानी नहा धोकर बाहर आती, सासू माँ को कुछ टोकने का मौका ही नहीं मिलता, और तब तक किचन का सारा काम सिमट गया होता। थोड़ी देर इधर उधर घूम फिर वो अपने कमरे में चली जाती, अपने कपड़े जेवर चूड़ियां संभालती रहती, कमरे को सजाती रहती। सास नंदे भी तारीफ करती, कितने सुंदर ढंग से सजाकर अपना कमरा रखती है। स्नेहा इशारा समझ जाती पर कह नहीं पाती, मैं तो सारा घर ही संभालती रहती हूँ, अपने कमरे की बारी ही नहीं आती। देवरानी दिन में सो जाती और सोकर उठते ही तैयार होना शुरू कर देती। देवर ऑफिस से आ बमुश्किल चाय पीते और पत्नी श्री को लेकर घूमने निकल जाते। सास भी स्नेह से निहारते हुए कहती, एकदम राम सीता सी जोड़ी है, दोनों के ही एक से शौक, नीले घूमने फिरने का शौकीन, बहू भी वैसे ही मिली है। निशान तो अपने भोले राम है, उसे कभी भी घूमने फिरने का शौक नहीं रहा। उनके लाड़ले के कोई शौक ना होने की वजह से स्नेहा कितनी घुटती रही इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता।

देवरानी किसी दिन घूमने नहीं जाती और किचन में आ कभी सब्जी बना देती तो पूरे घर में शोर हो जाता। खाने के टेबल पर सासू जी इंगित करती, आज तो सब्जी छोटी बहू ने बनाई है। और हमेशा मौन रहकर खाना खाने वाले ससुर जी भी बोल पड़ते, अच्छा थोड़ी और तो बहुत बढ़िया बनी है। पतिदेव को लगता उन्हें भी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। वे भी स्वाद लेते हुए बोलते, सचमुच बहुत बढ़िया बनी है। देवर इस प्रशंसा पर ऐसे फूलते जैसे उनकी ही तारीफ हो रही हो। आज सिंहा बेटे को थपकते थपकते खुद भी लेट गई थी, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। शारीरिक थकान से ज्यादा मानसिक थकान थी शायद। वह अपने दिन याद कर रही थी जब नई नई इस घर में आई थी, सबके आसपास मंडराती रहती पर कोई नोटिस भी नहीं लेता, बल्कि अक्सर उपेक्षा ही झेलनी पड़ती। और आज यही देवरानी अपने कमरे में ही बनी रहती है तो पति ससुर सब पूछ लेते हैं, अंकिता नहीं दिख रही, उसकी तबीयत तो ठीक है? स्नेहा से तो किसी ने नहीं पूछा कभी, पर उसने कभी पूछने का मौका भी तो नहीं दिया। बुखार में भी गोलियां लेकर काम में लगी रहती, क्या ये ठीक किया उसने? मायके में किसी ने उसे कभी सामने बिठाकर नहीं समझाया, पर उम्र की सीढ़ियां पार करते हुए कहानियों में, धर्म ग्रंथों में पढ़कर, फिल्मों में देखकर, अपनी दादी नानी बुआ मौसी माँ को देखकर यह एहसास अपने आप मन में घर करता गया कि लड़की को त्याग करना चाहिए, अपनी इच्छा के ऊपर दूसरों की इच्छा सर्वोपरि रखनी चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए, सारा दुख हंसते हंसते सह जाना चाहिए, ससुराल के नियम कायदे बिना ना नुकुर के अपना लेने चाहिए। और स्नेहा ने इन सब में कुछ ज्यादा ही बहादुरी दिखाई, खुद आगे बढ़कर सारे काम अपने ऊपर ले लिए। और अब 2 साल में तो ससुर जी की दवाई, सासू जी की धूप अगरबत्ती, देवर की जीन्स, पति की तो कोई भी चीज अगर ना मिले तो सब एक ही पुकार लगाते, और वो भी दौड़ दौड़ कर सबकी जरूरतें पूरी करती रहती। पर इन सब में इसकी स्थिति इस अदृश्य हवा की तरह हो गई जिसके बिना कोई जी नहीं सकता। सबको उसकी जरूरत है पर हवा दिखाई नहीं देती, हवा के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं महसूस होती, उसका ख्याल रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही उसकी अहमियत समझ में आती है, क्योंकि वो तो हमेशा अपने आसपास बनी हुई है। खुद को मिटाकर वह उस घर में इस तरह घुल मिल गई है कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। आज जब अंकिता अलग थलग बनी हुई है तो सब उसका अस्तित्व महसूस तो कर रहे हैं, क्या जग की यही रीत है? सामने झुके लोगों की ही उपेक्षा की जाती है, और अगर कोई आपकी ही उपेक्षा करने लगे तब जाकर उसका अस्तित्व महसूस होता है।

अचानक घड़ी पर जो नजर गई तो देखा 5 बज गए हैं। एकदम से हड़बड़ा कर उठ बैठी। अभी तो पानी आने वाला होगा, सब जगह उसे पानी स्टोर करना है। घर में आते ही उसने ये काम सासू जी से अपने हाथों में ले लिया था। दौड़ दौड़ कर किचन, बाथरूम सब जगह पानी भरती और ये जिम्मेवारी पूरी तरह उसी पर आ पड़ी। ननद और सासू दोनों अपने अपने कमरे में आराम करती रहती और पानी आने के समय का ख्याल स्नेहा को ही रखना पड़ता। स्नेहा सोचती, चलो सासू जी ने तो इतने वर्षों तक ये सब किया है, ननद तो छोटी है, कॉलेज से थकी हुई आई है, ये सारे काम स्नेहा को ही करने चाहिए। पर अब तो घर में देवरानी भी है, वो भी कर सकती है। और स्नेहा दोबारा लेट गई। जाने दो, आज देखती है पानी भरने कोई और उठता है या नहीं। अगर कोई पानी नहीं भरता तो होने दो थोड़ी मुश्किल, कह देगी उसकी आंख लग गई, आखिर वो भी इंसान ही है, कोई मशीन नहीं। स्नेहा ने तय कर लिया, आहान को तैयार कर पति के आने से पहले ही पार्क में ले जाएगी, कह देगी रो रहा था, बहलाने को ले गई। जब पति को नहीं महसूस होता कि ऑफिस से आकर कुछ समय पत्नी के साथ बिताएं, तो वो ही क्यों पानी का ग्लास और चाय का कप पकड़ाने का इंतजार करती रहे। खुद से लेकर पानी पी सकते हैं, बहन, माँ, अंकिता कोई भी चाय बनाकर दे सकती है, चाहे तो बाद में पार्क में आ सकते हैं, और ना तो ना सही। अब स्नेहा को थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना ही होगा, वरना उसका वजूद ही मिटता जा रहा है, वो सिर्फ किसी की बेटी, बहू, माँ बनकर ही रह जाएगी। आखिर कब तक वह दूसरों की चाकरी करती रहेगी। उसे अपने लिए जीना भी सीखना होगा। जब किसी को उसकी परवाह नहीं तो उसे ही स्वयं के लिए सोचना होगा। वो यूं अपना वजूद नहीं मिटने दे सकती। आहान थोड़ा बड़ा हो जाए फिर वो किसी स्कूल में टीचर बन जाएगी। यह फैसला करते ही उसका मन एकदम हल्का हो आया और सालों बाद भूला हुआ सा पसंदीदा गीत होठों पर आ गया, गुनगुना उठी।

आखिर कब तक, रश्मि वर्मा उर्फ रश्मि रविजा की लिखी कहानी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
2: समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन

0: कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहाँ रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विशेष मंदिर अनुष्ठान, भव्य शोभा यात्राएं और प्रसिद्ध अरनमूला वल्या सद्य इस पर्व का हिस्सा हैं। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की सफलता पर कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 के सफल प्रक्षेपण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। नेपाल और तिब्बत में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या 1282 हो गई है। 5053 लोग लापता हैं। शवों की पहचान के लिए DNA जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल तमिलनाडु के एक दिन के दौरे पर चेन्नई में रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति वाल्व संबंधी और संरचनात्मक हृदय रोगों के उपचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन इंडिया वाल्व्स 2026 में भाग लेंगे। वे चेन्नई के गिंडी में इंडिया वाल्व पंजिका का शुभारंभ भी करेंगे। पूर्वोत्तर में सीमा पार से होने वाली कृत्रिम मादक पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NCB की अगरतला क्षेत्रीय इकाई ने लगभग 17,84,00,000 रुपए मूल्य की करीब 22 किलो मेटमेफेटामाइन की गोलियां जब्त की हैं। मिजोरम और त्रिपुरा में 2 अलग अलग अभियानों में म्यांमा के एक नागरिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रूप और एंडर्स का रूप रसमुवन से खेलेगी। पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में किदांबी श्रीकांत को हांगकांग की ली चेक्यू से हार का सामना करना पड़ा। वियतनाम में पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन कर भारत अपराजित रहा। लीग चरण में भारत ने एंटीगुआ, बारबुडा, इसराइल और चेक गणराज्य को हराया। भारत ने टूर्नामेंट में अब तक कुल 37 पदक जीते हैं, जिसमें 6 स्वर्ण, 16 रजत और 15 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में 4th स्थान पर है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने की स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: रन अप पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: धीमे इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए

0: की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
1: पेशे फिल्म संगीत और पहला गीत आशा भोसले, उदित नारायण और साथी कलाकारों की आवाजों में, संगीतकार ए आर रहमान, गीतकार जावेद अख्तर और फिल्म का नाम है लगान।

0: अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि हमारे भत्ते पर जो नया मजदूर आया है उसके हाथ पैरों पर बहुत से दाग हैं। उसे इन पर चोट लगने से भी दर्द नहीं होता।
1: अरे ये तो कुष्ठ रोग का लक्षण है, तुम उसे अभी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाओ।
2: यदि आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में कुष्ठ रोग का कोई भी लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं। यदि संदिग्ध व्यक्ति में कुष्ठ रोग पाया गया तो सरकार द्वारा सूचित करने वाले व्यक्ति को 250 रुपए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम और केएस चित्रा की आवाजों में। फिल्म का नाम था लव। आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और अगला गीत है शिल्पा राव और सोनू निगम की आवाजों में। फिल्म का नाम है देसी बॉयज़।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। पेशे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे।

नमस्कार शानदार श्रोताओं, नए प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका आरजे चेतन और आज हम एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, हर परिवार का हृदय, सकारात्मक माता पिता, बच्चे का संचार। अरे चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, घर के

कामकाज निपटा रहे हो या बस फुर्सत में हो, आइए बात करें कि कैसे संचार आपके परिवार में चीजों को पूरी तरह से बदल सकता है। दोस्तों, आइए अब छोटों के साथ अपने संबंधों में प्रभावी संचार के जादू की खोज के लिए एक यात्रा शुरू करें। इसकी कल्पना करें एक ऐसी दुनिया जहां आपके बच्चों के साथ आपकी बातचीत एक अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया नृत्य की तरह होती है, जो कि एक सकारात्मक और मजबूत संबंध बनाती है। इस एपिसोड में हम ये विश्लेषण करने जा रहे हैं कि माता पिता बच्चों के बीच संचार क्लिक को क्या गतिशील बनाता है। ये सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है, ये समझ, विश्वास और प्यार का ताना बाना बुनने के बारे में है। सकारात्मक माता पिता बच्चों के संचार के रहस्यों का उजागर करेंगे, ये पता लगाएंगे कि यह पूरे परिवार के लिए कैसे माहौल तैयार करता है। एक ऐसे घर की कल्पना करें जहां हर कोई सुना, महत्व और जुड़ाव महसूस करता हो। जैसे ही हम पारिवारिक गतिशील पर संचार के प्रभाव को देखते हैं, हमें पता चलेगा कि कैसे हमारे बात करने के तरीके में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, हम यही नहीं रुक रहे हैं, यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है। हम आपको आपकी दैनिक बातचीत में कनेक्शन के उस अतिरिक्त स्पर्श को शामिल करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों से लैस करेंगे। इस आरामदायक माहौल की कल्पना करें जहां आपके बच्चे जानते हैं कि उनके विचार मायने रखते हैं और उनकी आवाज परिवार के मिश्रण में गूंजती है। ये सिर्फ उन पर बात करने के बारे में नहीं है, ये समझ और समर्थन की इस गर्माहट को बुनने के बारे में है। सबसे अच्छे समय में पालन पोषण करना एक कठिन काम है, यह समय लेने वाला भी है। पालन पोषण में कई जिम्मेदारियां शामिल होती है, जैसे बच्चों की देखभाल करना, उन्हें वह सिखाना जो उन्हें जानना आवश्यक हो और जीवन भर उनका मार्गदर्शन करना। माता पिता बच्चे का रिश्ता एक अनोखा बंधन है जो एक वयस्क और उनके बच्चे के बीच मौजूद होता है। जहाँ एक वयस्क अपने बच्चे की जरूरत की देखभाल करने और उनके वयस्क होने पर मार्गदर्शन प्रदान करने की जिम्मेदारी लेता है। एक अच्छा माता पिता बच्चे के रिश्ते या जहाँ बच्चा प्यार, स्वीकार्य और सुरक्षित महसूस करता है, एक अच्छे माता पिता वो होता है जो बच्चों की भावनाओं को सुनता है, अपने बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहता है और शारीरिक दंड भी भयानात्मक शोषण नहीं करता है। आदर्श रूप से वो बच्चे को तलाशने की विकसित होने के लिए एक सुरक्षित आश्रम प्रदान करते हैं। वे माता पिता को बिना शर्त समर्थन, मार्गदर्शन, अनुशासन और प्रोत्साहन के माध्यम से सिखाने और प्यार दिखाने का अवसर भी प्रदान करता है। माता पिता बच्चे के रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वह प्यार और विश्वास है जो माता पिता का अपने बच्चों के लिए होता है। यही चीजें उन्हें जिम्मेदार वयस्कों के रूप में विकसित होने में मदद करती है जो बड़े होकर अच्छे नागरिक बनेंगे। बदलते दौर में पारिवारिक रिश्ते काफी कमजोर होने लगे हैं। अमूमन लोग इसके पीछे तरह तरह की वजह बताते हैं, लेकिन रिश्ते के कमजोर होने के पीछे एक मुख्य कारण होता है आपसी कम्युनिकेशन की कमी। दरअसल आज के समय में हर कोई अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए, अपने सबसे करीबी रिश्तों को समय दे नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण न तो वह एक दूसरे की समस्याएं व मन में चल रही परेशानियों को समझ पाते हैं और ना ही साथ में वक्त बिताने से मिलने वाली खुशी का एहसास हो पाता है। इतना ही नहीं, आपसी कम्युनिकेशन की कमी के कारण आपस में गलतफहमियां पैदा होती है और इससे भी रिश्ते कमजोर होकर बिखरने लग जाते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि फैमिली कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया जाए। अब सवाल यह उठता है कि जब हर कोई अपने काम में इतना व्यस्त है, तो ऐसे में फैमिली कम्युनिकेशन को बेहतर किस तरह बनाया जाए। इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप कुछ छोटे छोटे टिप्स बनाकर ऐसे बेहद आसानी से कर सकते हैं। हो सकता है घर के हर सदस्यों के काम करने का समय अलग है, ऐसे में हर किसी के लिए एक साथ समय निकाल पाना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए आप अपने घर में एक नियम तय कर सकते हैं जिसमें दिन के 3 मील से कम एक मील साथ खाएं। इससे आप सभी कुछ वक्त साथ बिताने और फैमिली कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगा। बच्चे की देखरेख करते हुए माता पिता भी काफी कुछ सीखते हैं। भले ही आप अपने बच्चे को कितना भी प्यार करते हो या फिर अपने उसे

सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश की हो, लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन के दौरान गलतियां करते हैं तो इससे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स किसी भी रिश्ते को बेहतर बनाने में एक ब्रिज की तरह काम करती है। अगर ब्रिज कमजोर होता है, ऐसे में रिश्ते अधूरे ही रह जाते हैं। इसीलिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि माता पिता अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर लगातार काम करें। आप भले ही कितने अच्छे या मॉडर्न पेरेंट हो, लेकिन अगर आप कुछ कम्युनिकेशन मिस्टेक्स करते हैं तो इसका इफेक्ट बच्चों को भुगतना पड़ सकता है। वन साइडेड कम्युनिकेशन इज अ मिस्टेक, जिसे अधिकतर पेरेंट्स बार बार दोहराते हैं। अमूमन पेरेंट्स अपनी बात तो बच्चे से कह देते हैं, लेकिन अगर बच्चा कुछ कहना चाहता है तो उसकी सुनते ही नहीं। कई बार हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं या फिर इसे डांट कर चुप कर देते हैं। ऐसा करने से बच्चों को अपने ही घर में काफी अकेला महसूस करने लगता है। कई बार पेरेंट्स जब बच्चे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत अजीब जजमेंटल हो जाते हैं। टिप्पणियों से बच्चे आलोचना महसूस करेंगे, ऐसे में वो प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और इससे बहस शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, कभी कभी बच्चा ये भी सोचने लगता है कि पेरेंट्स उसके बारे में गलत ही सोचते हैं। ऐसे में वो और भी ज्यादा गलत हरकत करना शुरू कर देगा। एक पेरेंट्स के रूप में आपको कभी भी अपने बच्चे से या फिर बच्चे के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये देखा जाता है कि जब कभी बच्चा जिद करता है तो पेरेंट्स उसे शांत करने के लिए झूठा वादा करते हैं, बाद में मुकर जाते हैं, जिससे बच्चे को काफी बुरा लगता है। इतना ही नहीं, इस तरह आप बच्चे के सामने एक गलत उदाहरण भी पेश कर रहे हैं। इससे बच्चे को लगता है कि किसी भी मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने के लिए झूठ बोलना सही है। धीरे धीरे बच्चा हर छोटी छोटी बात पर झूठ बोलना शुरू कर देता है। अक्सर अपने पेरेंट्स से वह बॉन्डिंग नहीं बन पाती है जो वास्तव में उसके बीच होना चाहिए। लगातार बच्चे को ब्लेम करने से उसके मन में अपने पेरेंट्स के लिए एक नेगेटिव इमेज बनती है। कई बार जब पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ समझाना चाहते हैं तो वो वास्तव में उन्हें एक लंबा लेक्चर देते हैं, जिसमें कई बातों को एक साथ शामिल करते हैं। आप यकीनन बच्चों को कुछ ऐसा समझाना चाह रहे हो, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि बच्चा अभी इतना मैच्योर नहीं है, वह आपकी गहराई समझ नहीं पा सकता है। इसीलिए आपको घुमा फिरा के बात करने से बचना चाहिए। बेहतर होगा कि आप उससे एक बारे में एक ही विषय पर बात करें। अगर आप इसे सीधे तौर पर अपनी बात नहीं समझा सकते हैं, तो ऐसे में आप उसे एक कहानी के जरिए अपनी बात सिखा सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा कम्युनिकेशन मिस्टेक है, जिसे हर पेरेंट को बचना चाहिए। स्पष्ट, वशिष्ठ रहे और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करें। दयालु भाषा का प्रयोग आपके बच्चों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करने में मदद करता है। याद रखें, बातचीत से आपके नन्हे मुन्ने को सम्मान और प्यार का एहसास होना चाहिए। इसी के साथ ही आज का लम्हे प्रोग्राम यही खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपने आरजे चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com।

अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे। आकाशवाणी का ये चंडीगढ़ केंद्र है FM 107.2 MHz पर। पेश अगला स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश
1: और मैं अजीत। महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है।
0: लिखते हैं, रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से निभाएं, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर संदेश के लिए। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल।
0: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजनी जंघेल जी ने हमारे परिवार वाले संवाद पर स्लोगन भेजा है। लिखते हैं,
1: शिक्षित परिवार बच्चों को केवल पढ़ना नहीं लेकिन अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है।
0: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से। कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मेहू लिखते हैं,
1: नमस्कार। पेड़ की बात कार्यक्रम सुनते समय जब माइक्रोस्कोप पर तने और पत्ती को बच्चों को दिखाया गया तो हमें अपने छात्र जीवन के वो दिन याद आ गए जब हमने भी बायो लैब में इसी तरह दिन गुजारे थे
0: जी।
1: कार्यक्रम दिलचस्प और जिज्ञासा को शांत करने वाला रहा। उमंग की पूरी टीम को धन्यवाद और आभार।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देने के लिए।
1: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर जी लिखते हैं, सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें मेहनत का सहारा मिलता है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म से नाता रखता है, उसके लिए हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। बस विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाइए।
0: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने AI से संबंधित हमारी बातचीत पर एक विशेष प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
0: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 4 तारीख को कार्यक्रम उमंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के बारे में आप दोनों की बातचीत सुनने को मिली। आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी जिसमें AI के फायदे और नुकसान के बारे में बताया गया, सुनकर बहुत अच्छा लगा। उमंग टीम के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
1: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहकर संदेश भेजने के लिए
0: जी।
1: तो करते हैं शुरुआत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी की
0: जी।
1: तो विमलेश जी, पहले दिन हमने भारत की बात की
0: जी,
1: आज का क्या कार्यक्रम है?
0: हाँ जी जी, आज हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश की वादियों में। मुझे तो हिमाचल सुनते ही वहाँ की सुंदर सुरम्य घाटियाँ, सेबों से लदे बगान और हिमालय की चोटियाँ याद आ जाती हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा एक अमेरिकी व्यक्ति जिसने भारत में सेब को नई पहचान दी।
1: विमलेश जी, हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि आज एक अमेरिकी व्यक्ति की विशेष चर्चा क्यों, इसका औचित्य तो समझाइए।
0: जी जी जी जरूर। देखिए, हमारे भारत की विरासत इतनी समृद्ध है कि इससे प्रभावित होकर बहुत से विदेशी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। जैसे स्वीडन की मिस मार्गरेट नोबेल जो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या बनकर बाद में सिस्टर निवेदिता कहलाई, और बंगाल की स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: जी बिल्कुल विमलेश जी, मुझे तो फ्रांस की मिस मिर्रा अल्फांसा की याद आ रही
0: जी,
1: जो श्री अरविंद की शिष्या बनी और बाद में मदर कहलाई
0: जी,
1: और साथ ही साथ मदर टेरेसा भी मुझे याद आती है।
0: तो अजीत जी, इसी क्रम में आज हम श्रोताओं को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहेंगे जिसने भारत में आकर न सिर्फ यहाँ का जीवन जिया बल्कि पूरे प्रदेश की तकदीर बदल दी। अजीत जी, अब आपकी बारी कहानी को आगे बढ़ाने की
1: जी। श्रोताओ जरा सोचिए, एक विदेशी युवक जिसने हिमाचल की पहाड़ियों में नए तरीके से सेब की खेती शुरू की
0: जी,
1: और उस खेती से लाखों किसानों की आजीविका चलने लगी।
0: वाह, ये तो सच में अद्भुत है। कौन था वो युवक?
1: विमलेश जी, उस युवक का नाम था सत्यानंद स्टोक्स
0: जी।
1: उसका मूल नाम सैमुअल इवांस स्टोक जूनियर था। उसका जन्म अमेरिका के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। आराम की जिंदगी उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना।
0: तो वे भारत क्यों आए?
1: युवावस्था में वे मात्र 22 वर्ष की आयु में अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की सेवा की भावना से भारत आए
0: जी,
1: और हिमाचल प्रदेश के कोटगढ़ क्षेत्र में रहने लगे। उन दिनों वहाँ के लोगों का जीवन बहुत कठिन था।
0: श्रोताओ, वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो सिर्फ दूर खड़े होकर केवल सलाह देते हैं, वे लोगों के सुख दुख में सहभागी बने।
1: बिल्कुल, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। बाद में उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया और अपना नाम सत्यानंद रख लिया। उन्होंने भारतीय जीवन पद्धति को भी सम्मान दिया।
0: अजीत जी, हम बात कर रहे थे सेब की खेती के बारे में
1: जी। देखिए, ऐसा नहीं था कि उन दिनों हिमाचल में सेब की खेती नहीं होती थी, समस्या थी गुणवत्ता की
0: जी।
1: तो उन्होंने यानी सत्यानंद जी ने अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधे मंगवाए और हिमाचल में लगाए
0: जी।
1: शुरुआत आसान नहीं थी, लोगों को विश्वास ही नहीं था कि इससे कोई बड़ा परिवर्तन आएगा,
0: लेकिन धीरे धीरे जब उन पौधों ने फल देना शुरू किया तो इन उच्च गुणवत्ता वाले सेब

0: फलों ने बाजारों में धूम मचा दी। उनकी भारी मांग होने लगी और इससे हजारों किसानों के जीवन में भारी परिवर्तन आया।
1: और हम सब जानते हैं कि आज हिमाचल के सेब पूरे देश में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं।
0: जी,
1: न जाने कितने किसानों का जीवन बदल गया। एक व्यक्ति का दूरदर्शी निर्णय लाखों लोगों के लिए आशीर्वाद और वरदान बन गया। इसलिए तो उन्हें यानी सत्यानंद स्टोक्स को हिमाचल का एप्पल मैन भी कहा जाता है।
0: जी हाँ, फलों का व्यापार बढ़ा तो सड़कें भी बनी, बागवानी का विस्तार हुआ, फलों की खेती में नवाचार शुरू हुए, धीरे धीरे उस क्षेत्र का कायाकल्प हो गया। लेकिन श्रोताओं, उनका योगदान केवल खेती तक ही सीमित नहीं था, है ना जी? जी
1: जी हाँ बिमलेश जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सच्चाई ये है कि सत्यानंद जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन किया और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई
0: जी,
1: जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
0: यानी जिस व्यक्ति ने पहाड़ों में पौधे लगाए थे उसी व्यक्ति ने अन्याय के विरुद्ध भी आवाज उठाई, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है, देशभक्ति केवल जन्म से नहीं होती, कभी कभी सेवा से भी पैदा होती है। अजीत जी, तो अब करते हैं समापन कुछ विचारों के साथ।
1: जी जरूर।
0: श्रोताओं, कल्पना कीजिए, एक दिन था जब उस युवक के हाथ में कुछ पौधे थे और उन पौधों ने वहाँ के लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। शायद हमारे पास हजारों एकड़ जमीन नहीं है लेकिन हमारे हाथों में भी कोई न कोई पौधा तो अवश्य ही है, कोई विचार, कोई सेवा।
1: जी, शायद कोई प्रतिभा या आंखों के सामने कोई ऐसा बच्चा जिसे हम शिक्षा दे सकते हैं। तो इसीलिए
0: कभी किसी काम को छोटा मत समझिए, क्योंकि विशाल वृक्ष भी एक छोटे से बीज या पौधे से आरंभ होते हैं। इसलिए हम जहाँ भी रहें यूं ही जीवन व्यतीत न करें, कुछ ऐसा रोप कर जाएं जिसकी छाया आने वाली पीढ़ियां पा सकें।
1: जी, बहुत अच्छा विचार। तो साथियों, ये थी एक अमेरिकी युवक की भारत से प्रेम की कहानी। आज कभी यदि आप हिमाचल जाएं तो वहां के सेबों से लदे बागों को देखकर इस व्यक्ति को जरूर याद करें जो सैमुअल इवांस स्टोक्स जूनियर से अब सत्यानंद स्टोक्स के नाम से इतिहास में जाना जाता है।
0: जी, और आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
1: जी, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को आप सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको वहां कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
0: तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न।
1: प्रश्न है, सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। पहला कार्यक्रम है मेरे तो गिरिधर गोपाल।
0: इस कार्यक्रम में भक्ति मीराबाई के जीवन और उनके कृष्ण भक्ति का विशेष उल्लेख किया गया है और चर्चा की गई है कि आज भी आधुनिक साहित्य उनकी कृतियों के प्रति आभारी है। मेरे तो गिरिधर

मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्त। उन्हें भक्ति काल के प्रमुख संतों में गिना जाता है। जन जन में प्रचलित मीरा के भजन उनकी सरल आस्था का सीधा साधा चित्रण है।

0: मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। वो जोधपुर की एक रियासत मेड़ता के महाराज राव रतन सिंह की बेटी थी। बचपन में ही माता पिता का साया उनके सर से उठ गया था, इसलिए मीरा का पालन पोषण उनके दादाजी राव दूदा ने किया। शिक्षा के साथ साथ मीरा ने प्रशासन, राजनीति और संगीत में भी कुशलता प्राप्त की।
1: राव दूदा मीरा को बहुत लाड़ प्यार से पालते। नन्ही

0: मीरा की भोली भाली बातों पर वो मोहित हुए रहते।
1: एक दिन की बात है, राव दूदा कृष्ण की मूर्ति के आगे पूजा कर रहे थे। तभी बाहर किसी की बारात को देख मीरा अपने दादाजी के पास आई।
2: बाबा, ओ बाबा, देखो तो घोड़े पर चढ़कर कौन जा रहा है?
3: अरे देखो तो, ये तो बारात जा रही है।
2: देखो चमचम वस्त्र पहने हैं, कैसी सुंदर पगड़ी है। ये कौन है बाबा, ये कहाँ जा रहा है?
3: अरे ये दूल्हा है बिटिया, शादी करने जा रहा है। अभी उसकी बारात जा रही है, फिर किसी लड़की से शादी करके उसे पालकी में लेकर वापस आ जाएगा।
2: और मेरा दूल्हा कौन होगा बाबा?
3: अरे होगा बेटी, वो भी हो जाएगा रानी बिटिया, पर अब तू मुझे पूजा पूरी कर लेने दे।
2: नहीं, पहले आप मुझे बताइए मेरा दूल्हा कौन है, वरना मैं आपको गिद्ध गोपाल का शिकार नहीं करने दूंगी।
3: भाई बता दूंगा ना बेटी।
2: नहीं, पहले आप मुझे बताइए
3: बेटी। ये श्रृंगार इसीलिए तो कर रहा हूँ, यही है तेरा दूल्हा।
2: सच बाबा, ये है मेरा दूल्हा।
3: सच्ची भाई?
2: मेरा दूल्हा गिरधर गोपाल।
1: बचपन की इस भोली घटना के बाद से ही मीरा जैसे जैसे बड़ी होती गई, कृष्ण भक्ति में रमती गई।

0: चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से मीरा का विवाह हुआ, लेकिन मीरा मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और उनके ध्यान में खोई रहती थी।
1: पति भोजराज और ससुर राणा सांगा मीरा के इस निश्चल व्यवहार को बहुत सहजता से लेते,
0: परंतु ससुराल के अन्य लोगों को मीरा का ये रूप पसंद न आता था।
2: उदाबाई, देखो तो मीरा तैयार हुई या नहीं।
3: भाभी की बातें मेरी समझ में नहीं आती माँ साहब। मैंने तो सुबह उनसे कह दिया था कि शक्ति माँ के दर्शन करने जाना है।
2: हाँ तो फिर?
3: पर वो ना तो कुछ बोली और ना ही चली।
2: हाँ,
3: बस बैठी उस कृष्ण की मूर्ति की तरफ देखती रही।
2: हाय हाय,
3: जिसे अपने मायके से लाई है।
2: तू क्या अब तक तैयार नहीं हुई?
3: नहीं जी, तैयार होना तो दूर, वहाँ तो गाना बजाना चल रहा है।
4: नैनन में नंदलाल।
1: एक के बाद एक पति भोजराज और ससुर राणा सांगा की मृत्यु के बाद मीरा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा।
0: अब राणा सांगा का छोटा बेटा राणा विक्रमादित्य राजा बन चुका था।
1: विधवा मीरा का यूं गिरधर गोपाल के ध्यान में खोए रहना, नाचना गाना उसे राजघराने की परंपरा के अनुकूल न लगता था। वो अनेक तरीकों से मीरा को डराता धमकाता, मीरा को मारने के षड्यंत्र

0: ये विश अवश्य ही हमारा काम करेगा। भाभी सर तैयार है ना आप? ये आपके गिरधर गोपाल का चरणामृत है भाभी सा। आपको गिरधर गोपाल में विलीन कर देगा।
1: दासी

0: जी जी राणा जी महाराज।
1: जाओ ये कटोरा मीरा भाभी सा को दे आओ, उनसे कहना ये उनके कान्हा का प्रसाद है। क्या कहा? कान्हा का प्रसाद चरणामृत।
0: जी महाराज।
1: जाओ जल्दी पहुंचा दो इसे, कहीं देर ना हो जाए।
0: जो आज्ञा महाराज।
1: गिरधर गोपाल का चरणामृत।
0: रानी सा की जय हो।
2: आओ सखी भीतर आओ।
0: जी वो
2: क्या हुआ सखी, तने चिंतित सी लग रही हो।
0: वो कुछ नहीं।
2: कहो ना सखी क्या बात है।
0: वो रानी सा, वो महाराज राणा ने आपके लिए कान्हा का प्रसाद भेजा है। ये चरणामृत।
2: क्या मेरे कान्हा का प्रसाद?
0: पर हमें तनिक शंका होती है।
2: दो दो हमें, हम अभी पियेंगे।
0: रुकिए रानी सा, रानी सा जरा ठहरिए। रानी सा क्या क्या मालूम विष्णु तो
3: राणा भेजा विष का प्याला पीवत मस्त होई। दास मीरा लाल गिरधर होनी हो।

माना जाता है कि राणा ने कभी टोकरी में सांप भेजा, कभी मीरा के बिस्तर पर कांटे बिछवाए, लेकिन कृष्ण के प्रति आस्था मीरा को हर कष्ट से बचाती रही।

0: और एक दिन वो भी आया जब मीरा महल के सारे सुख और आराम छोड़कर मेवाड़ त्याग कर वृंदावन की ओर चलती।
1: हाथ में एक तारा लिए जोगन बनी मीरा को यूं रास्तों में नाचते गाते देख लोग हैरान हो जाते।
0: कुछ लोगों को मीरा का ये दिव्य रूप मोहित करता, लेकिन मीरा का यूं नाचना गाना उस समय के कुछ अंधविश्वासी लोगों के लिए बहुत असहनीय था। रास्ते में लोग तरह तरह की बातें करते।
2: भाई साहब, सुना है कि रानी मीरा ने महल छोड़ दिया।
3: अरे छोड़ना ही था
4: और कहीं, विधवा होकर नाचनो गानो
3: और क्या।
2: अरे भाई, पर ऐसी भक्त को भला कोई दीवारों में बांध सकता है क्या?
1: चेहरे पर कैसा दिव्य तेज है।
5: हाँ, कितनी भली है रानी साहब।
6: गाती भी बहुत अच्छा है।
2: हाँ, बहुत अच्छा, मैं मिला हूँ एक बार उनसे।
7: वो देखो, वो आ रही हैं, तुम्हारी रानी सा।
8: प्रणाम रानी सा।
9: प्रणाम रानी सा।
10: प्रणाम। जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण।
11: ऐसे पैदल कहाँ जा रही हैं रानी सा?
10: अपने कान्हा के पास वृंदावन।
8: यूं अपने घर परिवार को छोड़कर?
10: मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई।
2: मगर लोग क्या कहेंगे रानी सा?
7: राजकुमार भोजराज की विधवा और
10: जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
0: इस तरह समाज की और कुल की रीतियों को तोड़ती मीरा वृंदावन जा पहुंची।

0: स्त्रियों से भेंट नहीं करते, उन्होंने सदा इस नियम का पालन किया है।
1: हम तो समझते थे कि वृंदावन में श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है।

ठीक है, जैसी हरी इच्छा, चलती हूँ। स्वामी जी से कहना, संत देख दौड़ी आई, जगत देख रोई, संत सदा शीश राखूं, राम हृदय होई।

कहते हैं गोस्वामी जी मीराबाई की इस बात से इतने प्रभावित हुए कि स्वयं नंगे पांव बाहर तक आए और संत मीरा से मिले।

0: दिन वो वृंदावन छोड़ द्वारिकापुरी चली गई।
1: वहां उन्होंने रणछोड़ जी के मंदिर में डेरा जमाया। यहां वो अपने कान्हा की चाकरी करती।

0: बहुत ही प्रसिद्ध और जन जन की प्यारी बन चुकी थीं।
1: उनकी ये लोकप्रियता उनके मायके मेड़ता और ससुराल मेवाड़ तक भी जा पहुंची। मीरा इस सब से अनजान कृष्ण की भक्ति में खोई रहती।

0: मीरा बाई के दर्शन करके मैं तो धन्य हो गया।
1: कितनी मधुर आवाज।
2: हाँ।
1: सुना है मेड़ता और मेवाड़ दोनों राज्यों से उन्हें बुलावा आया है।
2: क्या?
3: हाँ, पर वो गई नहीं।
0: अरे सुना तो ये भी है कि उन्हें वापस ले जाने के लिए
4: ब्राह्मण भी भेजे गए।
1: तो क्या हमारी मीरा बाई चली जाएंगी?
3: पता नहीं, उनके बिना तो सब कितना सोना सोना लगेगा।
0: हाँ भैया, बहुत सोना हो जाएगा।
5: कहते हैं कि ब्राह्मणों के हठपूर्वक धरना देने पर मीराबाई श्री रणछोड़ जी से आज्ञा लेने मंदिर के भीतर गई और वहीं मूर्ति में आत्मसात हो गई।
6: विश्वास जो मानता हो, तर्क जो कहता हो, लेकिन ये सच है कि मीराबाई सीधी, सुगढ़ और सपाट भाषा में कविता रचने वाली अनोखी भक्त कवि

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरे तो गिरधर गोपाल, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन।
1: ये कार्यक्रम बच्चों में गणितीय और संख्या ज्ञान के कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें एक बच्ची के जन्मदिन की पार्टी में हुए मनोरंजक संवाद बच्चों में नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं।

0: Lớp một thầy khẩu ये लो तुम भी लो।
1: मैं तो अपने जन्मदिन पर केक काटता हूँ।
2: मैं भी।
3: मैं तो अपने जन्मदिन पे समोसे खिलाता हूँ।
0: मेरे घर पे तो जन्मदिन पे तो ढेर सारी मिठाई आती है।
4: हाँ, यहाँ पर रखी तो है कितनी सारी।
1: क्या हर साल इतनी मिठाई आती है?
0: हर साल जब मेरा जन्मदिन होता है तब मैं जितने किलोग्राम की होती हूँ उससे दुगनी मिठाई आती है हमारे घर पे।
1: इतनी ढेर सी मिठाई का क्या करते हो?
0: सबको बांटते हैं और सबको खिलाते हैं। पता है जब मेरा जन्म हुआ था मैं 3 किलोग्राम की थी।
1: अच्छा, फिर तो तुम्हारे घर में 6 किलोग्राम मिठाई आई होगी।
5: हाँ, ये बात तो ठीक है,
1: हो गई दुगनी।
3: अब तुम कितने किलोग्राम की हो कुंजम्मा?
0: अब मैं 30 किलोग्राम की हूँ।
1: तो अब तुम्हारे घर में क्या 60 किलो मिठाई रखी है?
0: हाँ, 60 किलोग्राम है।
6: अगर तुम 30 किलोग्राम और 50 ग्राम की होती तो
0: अरे बस, किलोग्राम जितनी मिठाई लाते हैं। वैसे तो मैं अब भी 30 किलोग्राम और 500 ग्राम की हूँ।
3: इस हिसाब से तो तुम्हारे घर में 61 किलोग्राम मिठाई आनी चाहिए।
1: हाँ, 61 किलोग्राम।
5: अगर ऐसे तो हाथी की मम्मी भी ऐसी मिठाइयाँ बांटती तो
0: पता है हाथी का बच्चा 300 किलोग्राम का होता है।
7: 300 किलोग्राम
1: तो उसकी मम्मी क्या 600 किलोग्राम मिठाई लाती
5: और चीटी की मम्मी उसका भार तो 1 मिलीग्राम होगा।
1: 2 मिलीग्राम की मिठाई कौन बनाएगा?
0: और अगर डायनासोर को मिठाई बांटनी होती तो तुम सोचो डायनासोर के बाद हम तो मिठाई खाते हैं।
1: हाँ, कहीं ये 60 किलोग्राम मिठाई खत्म ना हो जाए।
8: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन, और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
9: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी चेतना, जगबंधु और कुसुमलता के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
8: नमस्कार।
10: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
11: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है। ते तुसी सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। ते हुण तों कुछ ही पलां च आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तों हिंदी समाचार रिले किते जाणगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम

0: नड्डा ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। केरलम में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विशेष मंदिर अनुष्ठान, भव्य शोभा यात्राएं और प्रसिद्ध अरनमुला वल्ला सद्य इस पर्व का हिस्सा हैं। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष कार्यक्रम में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। इस दौरान मानव सहित अंतरिक्ष उड़ान, एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी और दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों तथा उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई। डॉक्टर सिंह ने फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्य मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से द्विपक्षीय बैठक की। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। सर्वोच्च न्यायालय इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भारतीय देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल चेन्नई जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति वॉल्व संबंधी संरचनात्मक हृदय रोगों के उपचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन इंडिया वॉल्व 2026 को संबोधित करेंगे। श्री राधाकृष्णन चेन्नई के गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1282 हो गई है। 5053 लोग लापता हैं। शवों की पहचान के लिए DNA जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराय रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल जोड़ी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रप और एंडर्स स्कारूप रमसेन से होगा। ताजा समाचार मिलने तक दोनों जोड़ियों ने 1-1 गेम जीत लिया है। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यू से हार का सामना करना पड़ा। लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज अनाहत सिंह का मुकाबला मलेशिया के शिव संगरी सुब्रमण्यम से होगा। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने कल बेल्जियम के नेले गिलिस को 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हुई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का यह चंडीगढ़ केंद्र है FM 107.2 MHz से।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: धीमे इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान? तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 MBPS प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
2: अरोड़ा प्लाईवुड,
3: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR, प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
2: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277।

0: हुणे तुसी सुन रहे सी गीत मोहम्मद इरफान ते अंतरा मित्रा दी आवाज़ां च। फिल्म दा नाम सी अजब गजब लव। आकाशवाणी दा चंडीगढ़ केंद्र है FM 107.2 MHz ते हुण तो कुछ ही पलां च तुसी सुनोगे प्रदेशिक समाचार। पहलां 6:10 ते हिंदी च साडे केंद्र तों ते उस तों बाद 6:20 ते पंजाबी च आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण बताया। पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरी श्रद्धा व आस्था के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने पंजाब विश्वविद्यालय

0: परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधा और केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला में उन्नत उपकरण सुविधा का उद्घाटन किया। कहा, पंजाब विश्वविद्यालय को विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग

0: है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि को राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण बताया और कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन त्यौहार पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर स्थित पवित्र तीर्थ स्थल पर पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश की उन्नति, खुशहाली व तरक्की के लिए प्रार्थना की। पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह ने प्रदेशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं दी।
3: जन्माष्टमी पर्व की मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान श्री कृष्ण का प्रकाश हुआ आज के दिन और कुरुक्षेत्र से भगवान श्री कृष्ण के चरण इस पवित्र भूमि पर पड़े और इसी पवित्र भूमि से भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया, ज्ञान का संदेश दिया।
2: मीडिया के एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 3 गुना गति से विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है।
3: आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार 3 गुना गति से काम कर रही है। बहुत से बिल विधानसभा के अंदर पारित हुए हैं और मुझे खुशी है सभी ने अच्छा सहयोग दिया है। लगभग 16 घंटे के करीब विधानसभा में कार्य हुआ है। प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार ये सरकार काम कर रही है।
2: धान खरीद के दौरान नमी की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि धान में नमी की मात्रा कम रहे।
3: उसको लेकर हम लगातार केंद्र के संपर्क में रहते हैं और क्योंकि धान में जो नमी की बात होती है उसको लेकर के कई प्रकार की दिक्कतें आढ़ती के सामने भी, सेलर्स के सामने भी वो खड़ी होती है, सरकार के सामने भी खड़ी हो जाती है और उसको देख करके हमारा प्रयास रहता है कि नमी कम हो। नमी कम होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।
2: हरियाणा के विभिन्न जिलों से जन्माष्टमी मनाए जाने के समाचार मिले हैं। कैथल में श्री 11 रुद्री शिव मंदिर, श्री हनुमान वाटिका, श्री शिव शक्ति धाम मंदिर, श्री गीता भवन मंदिर, श्री खाटू श्याम मंदिर एवं सनातन धर्म मंदिर को सुंदर व आकर्षक रोशनी व फूलों से सजाया गया है। श्रद्धालु भगवान कृष्ण को पूर्ण श्रद्धा के साथ भोग लगा रहे हैं। श्री 11 रुद्री शिव मंदिर के प्रांगण में सुंदर व भव्य झांकियां प्रदर्शित की गई हैं। वहीं फरीदाबाद में कृष्ण जन्माष्टमी पर NIT 5 स्थित श्री गीता आश्रम में साहित्यक व सांस्कृतिक केंद्र तथा स्वर साधना मंदिर के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संगीत के करीब 150 विद्यार्थियों ने श्री कृष्ण और राधा का स्वरूप धारण कर भजन व रास नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय में परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधा और केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला में उन्नत उपकरण सुविधा का उद्घाटन किया। इस सुविधा से जीव रसायन एवं भौतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग और संबंधित क्षेत्रों में विश्वविद्यालय की विश्लेषण एवं अनुसंधान क्षमताएं बढ़ेंगी। इस दौरान पंजाब विश्वविद्यालय के कुलाधिपति उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के साथ पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष भी उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति ने पंजाब विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी नवाचार मंच का भी उद्घाटन किया, जो विश्वविद्यालय के स्टार्टअप और अनुसंधान प्रणाली को मजबूत करेगा। उन्होंने अपने संबोधन में विश्वविद्यालय के 143 साल पुराने गौरवशाली इतिहास की सराहना की।
4: It is 143-year old university. That is the great legacy. We want to maintain that legacy. At the same time, we want to make this university as the most modern university of the world. Anybody from every section of the society can send me suggestions how to make this university as the world-class university.
2: उन्होंने कहा कि ये विश्वविद्यालय व्यावहारिक रूप से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरह ही है।
4: Already our university, the funding has been

0: done 80% by the central government, 20% from the state government. So it is already 80% central university only. But I am not going into that detail. What I am going to do is, his genuine grievance is that all the latest scientific subject should be included in our university.
1: उपराष्ट्रपति ने युवाओं से अपील की कि वे नशों को पूरी तरह से ना कहें और देश के विकास में अपना योगदान दें। इसके साथ ही उन्होंने परिसर की सुरक्षा को विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने आज हिसार के बिश्नोई मंदिर में आयोजित कृष्ण जन्माष्टमी व गुरु जम्भेश्वर महाराज के जन्मोत्सव समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 15वीं सदी में गुरु जम्भेश्वर जी की सोच थी कि पशु पक्षी व पौधे सब पर्यावरण का हिस्सा है और इनका संरक्षण करना चाहिए।
2: 15वीं सदी में गुरु जम्भेश्वर जी ने पर्यावरण की जो बात की, पशु पक्षी और पौधे उन सब के संरक्षण की बात गुरु जम्भेश्वर जी करते थे, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारी नायक अमृता ने किया, शहीद होकर के हर सारे में आगे बढ़कर कर प्रसार किया।
1: उन्होंने 10,000 पौधे लगाने के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद डीपी वत्स की प्रशंसा की और सभी को एक पेड़ माँ के नाम पर लगाने के लिए प्रेरित किया।
2: ये पेड़ माँ ये न उसका कुछ अर्थ है, धरती माँ उस पेड़ को संरक्षण देती, हमारी माँ हम सब को संरक्षण देती। आप एक पेड़ जरूर लगाएं, अपनी माँ के नाम एक पेड़ जरूर लगाएं और उसको संभाल के भी लगाएं।
1: कैबिनेट मंत्री ने समारोह में रखी गई मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का आश्वासन भी दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज अघादरी में प्रसिद्ध समाज सेवी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक स्वर्गीय जगदीश मित्तल के अंतिम संस्कार में भाग लिया। स्वर्गीय जगदीश मित्तल का कल निधन हो गया था। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय जगदीश मित्तल के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा शोक संतप्त परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय जगदीश मित्तल का निधन समाज और विभिन्न सामाजिक व शैक्षणिक संस्थाओं के लिए अपूरणीय क्षति है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण बताया। पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरी श्रद्धा व आस्था के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पंजाब विश्वविद्यालय में परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधा और केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला में उन्नत उपकरण सुविधा का उद्घाटन किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसीं चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने अज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विखे एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी अते टैक इनोवेशन फोरम का उद्घाटन किया। यूनिवर्सिटी नूं इक विश्व पदरी संस्था विच बदलण लई सांझे उपरालिआं दा दित्ता सद्दा। पंजाब सरकार ने अपने करीब 85,000 कर्मचारियों के महंगाई भत्ते मौजूदा 42% तो वधा के 60% करने का फैसला किया। जन्माष्टमी अज पंजाब समेत देश भर में श्रद्धा और उत्साह मनाई जा रही है। जलंधर कमिश्नरेट पुलिस ने अमरीका आधारित धोखाधड़ी के मामले नाल जुड़े एक लुड़ींदे भगौड़े मनजीत सिंह बेदी को जलंधर तो गिरफ्तार किया। देश के उपराष्ट्रपति अते पंजाब यूनिवर्सिटी के एक्स ऑफिशियो चांसलर श्री CP राधा कृष्णन ने विद्यार्थियों अते फैकल्टी नूं सदा दित्ता है कि वह इस विलक्षण संस्था नूं दुनिया दीआं चोटी दीआं 100 यूनिवर्सिटियां विच लिआउण लई अपना सब तो बेहतरीन योगदान देण। अज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विखे एक इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं उन्हां साल 1882 च इसकी स्थापना तो बाद इसकी विरासत नूं याद किया। नेतावां, कानूनदाना, विज्ञानियां, खिडारियां ते जनतक सेवकां दीआं पीढ़ियां वल्लों राष्ट्र निर्माण विच इसके योगदान का भी जिक्र किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ भारत के उच्च

0: बन रहा है। राजेश बाली, आकाशवाणी खबर जलंधर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी मौके देशवासियों नूं निक्कियां शुभकामनावां दित्तियां ने। इधर पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ते मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी सारिआं नूं शुभकामनावां दिंदिआं कामना कीती कि हर घर विच खुशियां दा वास होवे। उधर अमृतसर के प्रसिद्ध दुर्गयाना मंदिर विच भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी नूं लैके विशेष तैयारियां कीतियां गईआं ने। दुर्गयाना मंदिर के पुजारी पंडित मेगा शाम लाल ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन ते पूजा अर्चना लई दूर दुराडे के इलाकों तो वड्डी गिनती विच श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे ने। भारतीय जनता पार्टी के एसी मोर्चा के नवनियुक्त सूबा प्रधान शीतल अंगुराल ने अज पंजाब बीजेपी दफ्तर विखे अपना अहुदा संभाल लिया। इस मौके पंजाब बीजेपी के सूबा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों विशेष तौर पर मौजूद रहे। पंजाब सरकार समाज के कमजोर लोड़वंद वांछू वर्गों की भलाई सर्वोच्च तरजीह दिंदिआं उन्होंने समाजिक ते आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने लई पूरी तरह वचनबद्धता नाल काम कर रही है। कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि इसका उद्देश्य हर योग नागरिक नूं सन्मान, आत्मनिर्भरता ते आर्थिक सुरक्षा नाल जीवन जीण दे योग बनाउणा है। डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि बुढ़ापा पेंशन योजना समेत वख-वख सरकारी सुरक्षा योजनावां तहत सूबा सरकार वल्लों हुण तक सीधे लाभ तबादले राहीं 2,697 करोड़ 44 लाख तों वध दी रकम सीधी लाभपात्रियां दे बैंक खात्यां विच जमा करवाई जा चुकी है। जलंधर कमिश्नरेट पुलिस ने अमरीका आधारित लाभ धोखाधड़ी दे मामले नाल जुड़े इक लोड़ींदे भगौड़े मनजीत सिंह बेदी नूं जलंधर तो गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस मुखी गौरव यादव ने दसिया कि बेदी नूं कथित तौर पर अमरीका च पूर्व पोषण सहायता प्रोग्राम लाभ धोखाधड़ी के मामले के संबंध च अमरीका के अत लड़ींदे धोखाधड़ी करने वाले की सूची च रखा गया सी ते ओह कानून तो बचने लई इस साल अप्रैल च कैनेडा राही भारत आ गया सी। पंजाब पुलिस भगौड़ियां का पता लगाउण ते अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध नैटवर्क नूं खत्म करने लई निरंतर कार्ज कर रही है। भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी चंडीगढ़ के चेयरमैन ते डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने नेपाल च हाल ही च आए हड़ां तो प्रभावित परिवारां लई अज राहत समगरी नाल भरे दो ट्रकां नूं रवाना कीता। नेपाल रेडक्रॉस सोसायटी नूं भेजी जा रही राहत समगरी च जरूरी दवाइयां, पैक कीते भोजन पदार्थ, पीण वाला पानी ते सैनेटरी पैड शामिल ने। ते आखर च खास खबरां इक वार फिर तों। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विखे एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी ਅਤੇ ਟੈਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ 85,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 42 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60% ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਨਮਅਸ਼ਟਮੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਗੌੜੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸ਼ਾਮ 7:30। ਨਮਸਕਾਰ।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ FM 107.2 MHz ਤੇ। ਸ੍ਰੋਤਿਓ ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਰੰਭ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी धमाका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी अते 1000+ विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 5 अते 25 सितंबर नु लकी ड्रॉ होवेगा आज ही खरीदो TNC अप्लाई।
2: जो स्टील देश के रेलवेज ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार मजबूत लचीला भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
0: ते हुण ते थोड़ी ही देर च तुसी सुनोगे प्रोग्राम जयमाला जो विविध भारती दे मुंबई केंद्र तों रिले कीता जाएगा।

जय माला कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी साथियों को सलमा की ओर से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। फौजी साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए, कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है कर्मा।

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: फौजी साथियों, अगला गीत सुनिए।

0: आचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गनफॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी,
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेन इलवालरीवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं, और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंडाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: फौजी साथियों, अगला गीत सुनिए गायक और संगीतकार आदेश श्रीवास्तव और शशि की आवाजों में। गीत को लिखा है समीर ने और फिल्म का नाम है राजनीति।

चलते चलते। इस फिल्म का गीत सुनिए अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीत है जतिन ललित का, फिल्म का नाम है चलते चलते।

फौजी साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हर लम्हा हर पल देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। फौजी साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है अमिताभ बच्चन, अलका याग्निक, हेमा सरदेसाई, आदेश श्रीवास्तव और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है आदेश श्रीवास्तव का, फिल्म का नाम है बाखबान।
1: Valentine's Day.

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेलुलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

साथियों, समय कम होने की वजह से ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पाए। इस गीत में आवाजें थी अदनान शमी, फाल्गुनी पाठक, सुखविंदर सिंह और साथियों की। इस गीत को लिखा था समीर ने, संगीत था आदेश श्रीवास्तव का और फिल्म का नाम था दीवानापन। फौजी साथियों, जयमाला कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी दा चंडीगढ़ केंद्र है एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज ते हुण पेश ने चोणवें पंजाबी गीत ते शुरुआती गीत प्रभ गिल दी आवाज़ च।

0: दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं रमेश उपाध्याय की लिखी नाटिका हीरों का हार।
1: ओ, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो आज, क्या बात है?
2: बात बहुत अच्छी है मितिलदा, सुनोगी तो खुशी से झूम उठोगी।
1: बताओ तो सही।
2: मैं क्या बताऊं, तुम ही देख लो ये निमंत्रण पत्र।
1: निमंत्रण पत्र?
2: हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की ओर से एक पार्टी है 18 जनवरी की शाम को।
1: बस इसीलिए इतने खुश हो रहे थे?
2: क्यों मितिलदा, तुम्हें इससे खुशी नहीं हुई? मैं तो समझता था कि तुम, मेरा मतलब है तुम्हें कभी कहीं आने जाने का मौका नहीं मिलता, इसलिए इस पार्टी में तुम्हें जरूर जाना चाहिए। पता है ये निमंत्रण पत्र मुझे कितनी मुश्किल से मिला है?
1: मुश्किल से?
2: हाँ, ये कोई मामूली पार्टी नहीं है, स्टाफ के बहुत थोड़े लोगों को बुलाया गया है, इसलिए सभी इस कोशिश में थे कि उन्हें ये कार्ड मिल जाए।
1: तुमने बेकार ही इसके लिए कोशिश की।
2: क्यों, मैं तो तुम्हारे लिए ही ये कार्ड लेके आया हूँ, वहाँ चलकर बहुत से बड़े बड़े लोगों से मिल सकोगे।
1: पार्टियों में जाना और बड़े बड़े लोगों से मिलना अपनी किस्मत में कहा।
2: क्यों, ऐसी क्या बात?
1: ऐसे पूछ रहे हो जैसे जानते ही नहीं। ऐसे शानदार मौकों के लिए मेरे पास बड़ी अच्छी अच्छी पोशाकें रखी है ना, जिन्हें पहनकर चली जाऊंगी।
2: क्यों, तुम्हारे पास वो फ्रॉक है ना, वही जब हम थिएटर देखने जाते हैं तुम पहनती हो, मुझे तो वो हमेशा बहुत अच्छी लगती है।
1: हाँ, तुम्हें क्यों नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन औरों से तो पूछो वे क्या सोचते होंगे।
2: क्या करूं मितिलदा, मैं भी चाहता हूं कि तुम अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन तुम जानो एक जूनियर क्लर्क की तनख्वाह ही कितनी होती है।
1: तो ठीक है, फिर क्यों कहते हो पार्टी में चलने के लिए? कपड़े अच्छे पहन भी लो, मगर जब तक कोई जेवर नहीं हो सब फीका लगता है। वहां सब औरतें गहने पहन कर आएंगी और मैं, इससे तो अच्छा है कि मैं नहीं जाऊं पार्टी में।
2: गहनों की जगह तुम फूलों से श्रृंगार।

0: लेना। इस मौसम में तो फूल बहुत होते हैं, 10 फ्रैंक में तो इतने शानदार गुलाब मिलेंगे।
1: रहने दो, मैं नहीं जाऊंगी वहां, इतनी अमीर औरतें आएंगी उनके बीच में मैं गरीब सी क्या अच्छी लगूंगी।
0: अरे हाँ याद आया, वो तुम्हारी एक सहेली है ना।
1: कौन? फॉरेस्टियर?
0: हाँ हाँ, मादाम फॉरेस्टियर, वो तो बड़ी अमीर है, तुम मुझसे एक आध गहना मांग कर पहन लेना।
1: अरे वाह, खूब याद दिलाया, अब बन गया काम, मैं कल उसके पास जाऊंगी।
2: अरे मैथिलदा, तुम आओ आओ।
1: नमस्ते जीनी, कैसी हो तुम?
2: अच्छी हूँ, तुम सुनाओ, आज जीनी की तुम्हें याद कैसे आ गई? आओ बैठो।
1: मैं तुम्हारे पास एक काम से आई हूँ जीनी।
2: हाँ हाँ कहो, क्या काम है?
1: बात यह है कि मुझे एक पार्टी में जाना है, लेकिन वहाँ पहनकर जाने लायक मेरे पास कोई जेवर नहीं है, मैंने सोचा तुमसे मांग कर पहन जाऊं।
2: हाँ हाँ बड़े शौक से। ये लो, ये देखो, इनमें से तुम्हें क्या पसंद है, देखो लो।
1: अरे वाह, तुम्हारे पास तो बहुत से गहने हैं।
2: लो देखो, ये ब्रेसलेट तुम्हें पसंद है?
1: नहीं ये नहीं।
2: और ये मोतियों की माला?
1: ये तुम्हारे पास और कुछ नहीं है?
2: है क्यों नहीं, लेकिन तुम अपनी पसंद भी तो बताओ, आखिर तुम चाहती क्या हो?
1: तुम कुछ और गहने दिखा दो, मैं छांट लूंगी जो मुझे चाहिए।
2: अभी लो, ये लो, ये देखो।
1: देखो ये रहा, ये हार जीनी, इसे पहनकर पार्टी में चली गई तो बस।
2: बस फिर तो तुम ही तुम दिखाई दोगी इस पार्टी में, क्यों?
1: सच जीनी, बड़ा ही खूबसूरत हार है ये तो, कितना अच्छा लग रहा है।
2: तो इसे ही ले जा, पहले बता देती कि मुझे हार चाहिए तो मैं।
1: अच्छा जीनी, मैं चलूं।
2: फिर कब आएगी?
1: हार लौटाने तो आऊंगी ही।
2: अच्छा।
0: आज तो तुमने कमाल कर दिया मैथिलदा, पार्टी में बस तुम ही तुम दिखाई दे रही थी, आज मैंने तुम्हें जितना खुश देखा है उतना कभी नहीं देखा। खैर चलो, अब कपड़े बदल लो और सो जाओ, रात बहुत हो गई।
1: अच्छी बात है।
0: क्या हुआ?
1: हार, मैडम फॉरेस्टर का हार कहीं खो गया।
0: क्या कहा? हार खो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? अपने कमरों में देखो।
1: कहीं नहीं है। क्या होगा?
0: जब तुम पार्टी से लौटी थी तब था तुम्हारे पास?
1: हाँ हाँ, हाल में मैंने इसे छू कर देखा था।
0: लेकिन गली में कहीं गिरता तो आवाज सुनाई देती, शायद टैक्सी में रह गया।
1: यही हो सकता है। सुनो, तुम्हें टैक्सी का नंबर याद है?
0: नंबर? नंबर कैसे याद होगा, मुझे क्या पता था?
1: ये क्या होगा, फॉरेस्टर को तो हार वापस करना ही होगा।
0: ठहरो, मैं ऐसा करता हूँ, दूसरे रास्ते दिखाता हूँ जहाँ से हम पैदल आए।
1: जाओ जाओ जल्दी करो, कहीं किसी और के हाथ में पड़ जाए।
0: अच्छा।
1: और सुनो, पुलिस स्टेशन में चले जाना रिपोर्ट दिखाने के लिए।
0: और मेरा ख्याल तो ये है कि हमारे विज्ञापन में हार लाने वाले को कुछ नाम दे।
1: जाओ जल्दी करो।
0: अच्छा सर, जा रहा हूँ।
1: सुनो, कुछ पता लगा?
0: कुछ पता नहीं लगा, समझ में नहीं आता क्या करें।
1: न जाने कैसी बुरी घड़ी में वो हार लिया था, लेकिन कुछ तो करना ही होगा। ऐसा करें, कोई दूसरा हार खरीद कर दे दें उसी जैसा।
0: न जाने कितने में आएगा।
1: चलो मालूम कर लेते हैं।
0: किससे?
1: उस हार का केस मेरे पास है, उस पर दुकानदार का नाम लिखा है, उसे चलकर पूछते हैं, उसी जैसा मिल गया तो खरीद लेंगे।
0: चलो देखते हैं, वो केस अपने साथ ले लो।
1: अच्छा आओ चलो।
3: आइए साहब, आइए मैडम, क्या सेवा करूं आपकी?
0: जी हमें एक हीरों का हार खरीदना है।
3: जरूर जरूर, आइए इधर आकर देखिए। वैसे किस तरह का हार चाहिए आपको?
1: सुनिए, हमें एक खास तरह के हार की तलाश है, वो हार आपकी दुकान से ही खरीदा गया था। देखिए ये है वो केस जिसमें हार गया था, इस पर आपकी ही दुकान का नाम लिखा है।
3: बेशक, मेरी ही दुकान का है, लेकिन ठहरिए जरा, मैं अपने बिक्री खाते में देख लूं कैसा हार था। आप बैठिए तो सही, मैं अभी देख लेता हूं।
4: अरे भाई वो रजिस्टर उठाना जरा।
3: हाँ, ये नहीं, ये भी नहीं,

0: इसमें भी नहीं। हाँ ये रहा ये रहा, लेकिन साहब इसमें तो सिर्फ केस की बिक्री दर्ज है। मेरा मतलब है हमारे यहाँ से सिर्फ ये केस खरीदा गया है, हार नहीं। हार शायद कहीं और से लिया गया होगा।
1: अच्छा, माफ कीजिए आपको तकलीफ थी।
0: जी नहीं, कोई बात नहीं, आप ही की दुकान है।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: लो, सारा बाजार तो छन मारा, कहीं वैसा हार नहीं मिलता। अब
2: सुनो, अभी एक दुकान और है पैलेस रॉयल में।
3: लेकिन वो तो बहुत छोटी सी दुकान है, उसमें क्या?
2: चलकर देख लेने में क्या हर्ज है, कभी कभी छोटी दुकानों पर भी ऐसी चीजें मिल जाती हैं। और दुकान भी तो दूर नहीं है, वो रही, आओ ना देख लेते हैं।
3: चलो।
1: मिथिलदा।
2: हाँ?
1: मिथिलदा, इधर देखो, ये हार है ना बिल्कुल वैसा ही।
2: अरे हाँ, सचमुच बिल्कुल वही। जरा पूछो तो कितने का है।
1: सुनिए जनाब।
4: फरमाइए।
1: ये हार कितने का है?
4: कौन सा, ये?
1: हाँ, जी हाँ, जी हाँ।
4: जी इसकी कीमत है 40,000 francs।
1: 40,000 franc?
4: इसमें आश्चर्य की क्या बात है साहब, असली हीरों का हार है, इमिटेशन तो है नहीं।
1: लेकिन 40,000 franc तो बहुत होते हैं साहब।
4: आप तो कीमत देख रहे हैं। चीज भी तो देखिए।
2: कुछ कम नहीं कर सकते आप?
4: देखिए मैडम, हमने इसके साथ के कई हार बेचे हैं, 40,000 से बिल्कुल कम नहीं। अब ये आखिरी बच गया है, आप चीज देख लीजिए और खुद ही बताइए।
1: देखिए, मुंह मांगिए कीमत की बात छोड़िए, हार तो हमें खरीदना ही है।
4: तो फिर एक बात बोलूं?
1: बोलिए।
4: फिर उसके आगे एक फ्रैंक इधर ना एक फ्रैंक उधर।
2: जी, जी, जी, हाँ, जी, हाँ, बिल्कुल। हमको मोल भाव करके अपना वक्त बर्बाद करने तो आए नहीं है।
4: तो फिर 36,000 franc, इससे ज्यादा ना कम।
2: क्यों लाए सर, क्या ख्याल है?
1: ठीक है, लेकिन देखिए जनाब, बात यह है कि हमारा इसी तरह का एक हार खो गया है। हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप 6 दिन तक इसे रोके रहिए। अगर हमारा हार मिल गया तो हम आपको बता देंगे, और अगर नहीं मिला तो 36,000 देकर खरीद ले जाएंगे।
4: ओहो, बड़े दुख की बात है कि आपका इतना कीमती हार खो गया। खैर कोई बात नहीं, मैं 6 दिन तक इसे किसी को नहीं बेचूंगा।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद की क्या बात है मैडम, हम तो आप लोगों की सेवा करने के लिए ही बैठे हैं। वैसे मुझे ये सुनकर सचमुच दुख हो रहा है कि आपका हार खो गया।
1: कोई बात नहीं, हमें आशा है कि हमें 1 हफ्ते में मिल जाएगा वो।
4: 1 हफ्ते में ना भी मिले और आप इस हार को खरीद भी ले जाएं, तो मैं एक मौका आपको और दे सकता हूँ।
2: वो क्या?
4: मान लीजिए आपका हार इस हफ्ते नहीं मिला और आप इस हार को खरीद ले गई, और बाद में आपका भी हार मिल गया।
1: जी,
4: तो मैं इसे वापस ले लूंगा।
1: जी, बहुत अच्छा।
4: लेकिन
1: जी
4: पूरी कीमत में नहीं, 34,000 में, क्योंकि साहब आखिर हमें भी जिंदा रहना है।
2: कोई बात नहीं, ये ठीक है, 2,000 देकर 34,000 बचाना कौन नहीं चाहेगा भला। धन्यवाद।
4: धन्यवाद, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा।
1: अवश्य।
4: नमस्कार।
1: मिथिलदा, 36,000 कहाँ है अपने पास?
2: कैसे भी हो कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुनो, तुम्हारे पास कुल कितने फ्रैंक हैं?
1: तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं। मेरे पिताजी जो 18,000 छोड़ गए थे, उनके सिवा मेरे पास कुछ नहीं।
2: तो 18,000 का ही तो इंतजाम करना है, करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं।
1: लेकिन सोचो तो मिथिलदा, मान लो 18,000 franc मैंने कर्ज ले लिया, लेकिन जिंदगी भर इस कर्ज से पीछा नहीं छूटूंगा।
2: तुम चिंता मत करो, मैं मेहनत करूंगी, कम से कम खर्च में हम लोग गृहस्थी चलाएंगे।
1: ओहो, मेरी समझ में नहीं आता
2: कि समझ में न आने की क्या बात है। नौकरानी को हम लोग निकाल देंगे, इस मकान को छोड़कर कुछ सस्ता सा मकान ले लेंगे, घर का सारा काम मैं खुद करूंगी।
1: तुम?
2: घर का काम होता ही कितना है, घर की सफाई, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, और हाँ कपड़े भी धोबी से धुलवाने के बजाय मैं खुद धोऊंगी। तुम चिंता मत करो, कर्ज चुकाने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी।
1: उन सस्ते मकानों में जहाँ मजदूर लोग रहते हैं तुम रह लोगी, उन मकानों में पानी तक तो बाहर से लाना पड़ता
2: है। मैं सब कुछ कर लूंगी, तुम कर्ज तो ले लो। सुनो, तुम भी अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करना।
1: करनी ही पड़ेगी, मैं कल से ही कहीं पार्ट टाइम काम शुरू कर देता हूँ।
2: तो फिर चलो, वो हार ले आए।
1: लेकिन मिथिलदा, हम चाहें जितनी मेहनत करें, 18,000 का कर्ज,
2: 5 साल, 10 साल, 15 साल, इससे ज्यादा तो नहीं लगेंगे कर्ज चुकाने में। चलो भी, देखा जाएगा, आओ।
1: चलो।
5: वक्त कहां से कहां पहुंचा देता है इंसान को। आज मैं एक

0: गरीब मजदूर की बीवी या नौकरानी जैसी लगती हूँ?
1: अरे ये तो फॉरेस्टियर है चीनी, वो ये अभी तक उतनी ही सुंदर है। 10 साल इसके ऊपर से भी तो गुजरे हैं, लेकिन जीनी, जीनी, नमस्ते जीनी।

0: मिथिलदा हो, तुम इतनी कैसे बदल गई?
1: हाँ जीनी, मैं पिछले 10 वर्षों से बड़ी ही मुसीबत में दिन काट रही हूँ।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ जीनी, और आज तुम्हें मुझे पहचानने में भी दिक्कत हो रही है।
0: मेरी वजह से? क्या मतलब?
1: जीनी, तुम्हें याद है?
0: हाँ हाँ।
1: आज से 10 साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंस्ट्रक्शन में एक पार्टी हुई थी और मैं तुमसे हीरो का हार मांग कर ले गई थी।
0: हाँ याद है, अच्छी तरह से याद है मैटिल्डा, लेकिन उससे क्या?
1: उससे वो हार खो गया था।
0: खो गया था? लेकिन तुम तो तीसरे ही दिन उसे लौटा गई थी।
1: जो हार मैंने तुम्हें लौटाया वो दूसरा था जीनी, उसे खरीदने में हम पर बहुत कर्ज हो गया, 44,000 फ्रेंक। लेकिन शुक्र है अब एक एक पाई चुका दी गई है।
0: हे भगवान, तुम्हारा मतलब है कि तुमने मेरे हार के बदले हीरों का हार खरीदा?
1: हाँ, तभी तो।
0: ओ,
1: क्या हुआ?
0: तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया मैटिल्डा? मेरा हार तो नकली हीरों का हार था।
1: क्या?
0: उसकी कीमत तो मुश्किल से 500 फ्रेंक थी।

हवा महल कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रमेश उपाध्याय की लिखी नाटिका हीरो का हार। निर्देशक थे सत्येंद्र शरत। ये थी आकाशवाणी दिल्ली की भेंट। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन, हर लम्हा हर पल आपके साथ। कार्यक्रम चित्रलोक बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए आदेश श्रीवास्तव और वसुंधरा की आवाजों में। गीत को लिखा है प्रसून जोशी ने, संगीत है आदेश श्रीवास्तव का और फिल्म का नाम है आंखें।

0: जब उसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती
1: उजाली उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ
2: चिट्ठी न कोई संदेह
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: लीजिए सुनिए उदित नारायण को, संगीत है आदेश श्रीवास्तव का और फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना।

0: चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: दस साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका। जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे, 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आप सुनेंगे सोनू निगम और आदेश श्रीवास्तव की आवाजों में। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है आदेश श्रीवास्तव का, फिल्म का नाम है जोरू का गुलाम।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुँचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला, स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना हम

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

साथियों, चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं सोनू निगम की आवाज में। नगमा निगार है नुसरत बद्र, संगीत है आदेश श्रीवास्तव का और फिल्म का नाम है दीवार।

0: रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक समाप्त होता है। सुनिए, सुनाइए और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देश और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ये शर्त रखी है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके न्यायिक अधिकारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की अनुमति मिलने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय के योग्यता और प्रदर्शन मूल्यांकन से गुजरना होगा। न्यायालय ने इन राज्यों में इस वर्ष 31 मार्च को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारियों के लिए भी सीमित अवसर खोला ताकि वे न्यायिक सेवा में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने

0: इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थीं। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यहां कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है।
6: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
7: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
6: And recovery efforts in the country.
1: श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1,907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर और अधिक फॉरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अन्य सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। इसके बाद नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुवाकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, धाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई। काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान 2 और लोगों की मृत्यु हुई।

0: मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वॉर्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने ये बात कही। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाक द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय वार्ता को संबोधित कर रहे थे। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अपलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताएं दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज डिजिटल अरेस्ट के 3 बड़े मामलों में देश भर में कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र 6 के अंतर्गत 3 लोगों को हिरासत में लिया।
3: देश भर में लगातार बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए देश के 20 राज्यों में 89 स्थानों पर छानबीन का अभियान चलाया गया। इस ऑपरेशन की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी। राजस्थान के जालसाज ने 7,67,00,000 रुपए, गुजरात के जालसाज ने 19,24,00,000 रुपए और राजस्थान के ही एक अन्य जालसाज ने 15,45,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की। एजेंसी ने डिजिटल अरेस्ट के संगठित अपराध से निपटने का संकल्प भी दोहराया। यह ऐसी समस्या है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी देश भर के नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बताया है। अभिनव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज बडगाम जिले में एक आतंकी को मार गिराया। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्र में आतंकियों की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अभियान शुरू किया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी से एक राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है।
4: द्वारका के जगत मंदिर में फल, दाल चावल, मिठाई और 56 भोग के खास प्रसाद के चढ़ावे के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर और पुलिस अधिकारियों ने भक्तों के लिए बैरिकेडिंग, CCTV सर्वेलेंस और ड्रोन मॉनिटरिंग जैसे इंतजाम किए हैं। डाकोर के राजा रणछोजी मंदिर में सजावट आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। दूसरी ओर अहमदाबाद के इस्कॉन और भारत के हरे कृष्ण मंदिर समेत कई कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर युवाओं ने खास रासलीला का आयोजन किया। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरलम में भी जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल से गणपत्यार मंदिर से लाल चौक तक शोभा यात्रा निकाली। कुलगाम के वेसु क्षेत्र में कश्मीरी पंडितों ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर रंगारंग झांकी और शोभा यात्रा निकाली। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है।
5: पटना, भोजपुर, भागलपुर और पश्चिम चंपारण समेत बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए NDRF की 9

0: और एसटीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। प्रभावित परिवारों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है, साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कैंप कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के साथ साथ राहत और बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रासमुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यूर से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से तेज वर्षा हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए शैलेंद्र सिंह की आवाज में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है बॉबी।

आइए सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में वो गीत जिसे लिखा है गुलशन बावरा ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है ये वादा रहा।

छाया गीत हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।

0: पुराने दिलों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, धुन है राजेश रोशन की और फिल्म का नाम है दूसरा आदमी।

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है सागर।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं कंचन और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म का नाम है रफू चक्कर।

0: साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी या किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखो ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

आज एक ऐसा कलाकार जिसने कई फिल्मों में बैकग्राउंड संगीत दिया, कई फिल्मों में गाया और बहुत सी फिल्मों के संगीतकार रहे। 1990 और 2000 के दशक के एक लोकप्रिय कलाकार का जिक्र है आज। आइए सबसे पहले रूना लैला के साथ इनका गाया फिल्म अग्निपथ का ये गीत आपको सुनवाएं।

इस कलाकार ने फिल्म सैलाब में बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था। आइए इस गीत को भी सुन लें।

शाहरुख खान रानी मुखर्जी अभिनीत 2003 की चलते चलते फिल्म में संगीत जतिन ललित और आदेश श्रीवास्तव का था। फिल्म संसार में कटनी मध्य प्रदेश से आए आदेश का जन्म 4 सितंबर 1964 को हुआ था। आदेश ने शुरुआत में आरडी बर्मन राजेश रोशन जैसे संगीतकारों के साथ एक ड्रमर की हैसियत से काम किया, फिर एक स्वतंत्र संगीतकार के रूप में आपने अमिट छाप छोड़ी। राजनीति फिल्म का उनका संगीतबद्ध ये गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। आइए सुनते हैं आदेश श्रीवास्तव की आवाज में ये गाना।

एक सफल संगीतकार रहे हैं आदेश श्रीवास्तव। अपने संगीत के करियर में आपने 100 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया है। फिल्म मेजर साहब का है ये गाना।

राजेश श्रीवास्तव का विवाह जतिन ललित और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित की अभिनेत्री बहन विजयता पंडित से हुआ। बात 1993 की है, जब राजेश श्रीवास्तव को एक बड़ा ब्रेक फिल्म कन्यादान के लिए मिला। लता मंगेशकर ने इनका संगीतबद्ध गीत उदित नारायण के साथ गाया था, जो लोकप्रिय हुआ, पर यह फिल्म और इसके बाकी के नगमे उतने नहीं चले। फिलहाल ओ सजना दिलबर कन्यादान का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

जैसे कि हमने कहा कि कन्यादान फिल्म के गीत बाकी के नहीं चले या उतने लोकप्रिय नहीं हुए, ऐसा ही फिल्म जाने तमन्ना के साथ भी हुआ। इसके गीत भी उस तरह से नहीं लोकप्रिय हुए जैसा उनको होना था, जैसी उम्मीद आदेश को थी। लेकिन आदेश ने इन असफलताओं से

हार नहीं मानी। बाउंस बैक करते हुए इन्होंने जिस फिल्म में अपनी पुनः वापसी की उसकी चर्चा करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल 2004 की फिल्म दीवार के गीत के साथ आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं।

सन 1994 की बात है। फिल्म आई आओ प्यार करें। आदेश श्रीवास्तव अपने श्रोता दर्शकों के बीच मधुर कर्णप्रिय संगीत के साथ

आदेश श्रीवास्तव ने कई हिट गाने गाए, जैसे सोना सोना, शावा शावा, गुस्ताखियां, फिर कुंवारा के गीतों के माध्यम से फिर एक बार सफलतापूर्वक पहुंचा आदेश का संगीत, जिसे दर्शकों ने सराहा। ये गाना है फिल्म आंखें का, आदेश श्रीवास्तव और वसुंधरा की आवाज।

0: जैसा कि हम जानते हैं, एक गायक संगीतकार के साथ साथ एक अभिनेता के रूप में भी आदेश श्रीवास्तव ने अपनी पहचान बनाई। 1992 की अंगार में इनका एक्टिंग डेब्यू हुआ था और 1991 की फिल्म प्रहार में आपने एक रोल अदा किया था, छोटा सा वायलिन वादक बने थे आप। सन 2016 की मराठी फिल्म फैमिली कथा में भी आपने काम किया। वैसे तो इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार का अपने साथियों के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार रहा ही होगा, पर कहते हैं कि अमिताभ बच्चन के साथ आदेश श्रीवास्तव के संबंध काफी अच्छे रहे। आइए सुनते हैं कभी खुशी कभी गम का ये गाना।
1: अजी बादशाह की देख रहे हो तुसी, चलो शुरू हो जाओ। 1 2

राजेश श्रीवास्तव की आखिरी फिल्म थी जिसमें आपने म्यूजिक स्कोर किया था वेलकम बैक, जो इनके जन्मदिन 4 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी और 5 सितंबर को कैंसर ने राजेश श्रीवास्तव को संगीत प्रेमियों से यकायक छीन लिया। ये क्षति अपूर्णीय है, लेकिन उनका संगीत और उनकी शख्सियत श्रोता, दर्शकों और करीबियों के बीच एक याद बनकर हमेशा रहेगी।

0: आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था गायक संगीतकार आदेश श्रीवास्तव पर, आलेख और स्वर जी श्याम का, और प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिवर माउस में लाइन लगी होती
1: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ
2: चिट्ठी न कोई संदेह
1: 20 सितंबर से हर रविवार

0: प्रस्तुत है छाया गीत। छाया गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूजा नारायणिया का नमस्कार।
1: वो जब याद आए,
0: किसी की याद इतनी गहरी होती है कि आंखें बंद करो तो सामने वही चेहरा उतर आता है। यादों का दर्द भी उतना ही गहरा होता है। वो हंसी सुनाई देती है, वो बातें याद आती हैं, दिल फिर उसी बीते हुए पल में लौट जाता है। समय आगे बढ़ जाता है मगर मन वहीं ठहरा रह जाता है जहां आखिरी बार साथ थे। ये रिश्ते खत्म होकर भी खत्म नहीं होते, यादों में सांस लेते रहते हैं और यादें रात की खामोशी में एक दर्द भरी धुन बन जाती हैं।

जाने के बाद भी जैसे घर की दीवारों पर उसकी आहट ठहरी हुई है। हर शाम दरवाजे की ओर देखता ये मन, जाने क्यों आज भी उसकी राह तकता है। बहुत कुछ कहना था उससे मगर शब्द होठों तक आकर लौट गए। अब वही अधूरी बातें रातों में साथ जागती हैं और उसका इंतजार धीरे धीरे एक गीत बनकर भीतर गूंजता।

उसके बिना सब कुछ तो है, मगर फिर भी कुछ भी पूरा नहीं लगता। आंगन वही है, मौसम वही है, जान भी वही है, बस उसे देखने वाली आंखों में अब पहले सी चमक नहीं। कभी लगता है उससे बिछड़कर उसे नहीं, अपने भीतर का एक हिस्सा खो दिया है। जो बातें उससे करनी थी, अब वह होठों की खामोशी में कैद है। और यही अधूरापन हर रात दिल से एक नया गीत लिखवाता।

तरह की सबसे गहरी आवाज खामोशी ही होती है, जिसमें कोई शिकायत नहीं होती, फिर भी हर सांस किसी दर्द की कहानी कहती है। मन बार बार पूछता है, क्या उसे भी कभी महसूस होती होगी? क्या किसी शाम उसका दिल भी अचानक उदास होकर याद करता होगा? इन अनकहे सवालों के बीच सिर्फ तन्हाई एक जवाब बनकर सामने आ बैठती है।

दिल जानता है कि बीता हुआ पल लौट कर नहीं आता, फिर भी आंखें किसी चमत्कार की उम्मीद करती हैं। कभी लगता है अचानक वो सामने आ जाएगा और कहेगा, मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन फिर यह मन अपनी ही कल्पना पर मुस्कुरा देता है और आंखें चुपचाप भीग जाती हैं। प्रेम में किसी को भूलना उतना मुश्किल नहीं होता जितना उसके लौटने की उम्मीद को छोड़ना होता।

उम्मीद कभी थकती नहीं, आंखें पथराने लगती हैं, चांदनी रातें भी और गहरी होती जाती हैं। आखिरी मुलाकात की हर बात उम्र भर के लिए दिल में याद बनकर रह जाती है। उसका आखिरी बार मुड़कर देखना आज भी आंखों में एक मंजर की तरह ठहरा हुआ है। तब कहां पता था कि वह पल

हमारी कहानी का आखिरी पन्ना बन जाएगा। काश उस पल को वहीं रोक लेते हम, काश आज साथ होते हम।

नया गीत का आज का सफर आपने तय किया पूजा निरानिया के साथ। छाया गीत के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक।

त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, वीको टर्मर क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में आयोजित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय चर्चा को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और स्वच्छ ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वार्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने ये बात कही। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज कहा कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट फेस्ट इस क्षेत्र की जीवंत संस्कृति, रचनात्मकता और युवाओं का उत्सव है। नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्ट के 9वें संस्करण को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये पहल अब एक राष्ट्रीय मंच बन गई है जहां युवा

0: भारतीय उस विविधता का जश्न मनाते हैं जो उन्हें खास बनाती हैं, और उन साझा बंधनों का भी जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 11:05 ਤੇ 7 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 5:55 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ।